जा बुरा करते हाल, पलक फड़के आए के दिल धड़के, उमर की उठा कड़कती कमा, कातिल अदा।

किसी ने कहा है कि यार अपनों के साथ ही तो लड़ाइयाँ होती है। वैसे बात तो सही है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते, सत श्री अकाल, वणकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफरीन, आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और नोटिस किया है कभी कि अक्सर उन्हीं लोगों से हम ज़्यादा लड़ते हैं ना जो एक्चुअली हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, अपने होते हैं। और प्रॉब्लम क्या है ना कि हर आर्ग्यूमेंट में हमें एक विनर चाहिए होता है। नहीं, मेरी बात सही है। अरे भाई, रिलेशनशिप है, डिबेट कॉम्पिटिशन थोड़ी है ना। मैं एक बहुत अच्छी लाइन ना मैंने पढ़ी जो कहती है कि अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप इज नेवर मी अगेंस्ट यू, है ना, इट्स ऑलवेज अस अगेंस्ट द प्रॉब्लम। एंड ये सिर्फ ना हस्बैंड वाइफ या कपल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पेरेंट्स के साथ भी हो सकती है, सिबलिंग्स, बेस्ट फ्रेंड, किसी के साथ भी हो सकती है। और कभी कभी सामने वाले को हराने से ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको समझना। अटैक करने के बजाय बात करो, अज्यूम करने के बजाय पूछ लो, और हर डिसएग्रीमेंट पे डिस्टेंस क्रिएट करने के बजाय थोड़ा रिपेयर करने की कोशिश कर लो। बिकॉज हर आर्ग्यूमेंट जीतना ज़रूरी नहीं है बाबू मशाए, कभी कभी इंसान को जीतना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। बस इसी खूबसूरत ख्याल के साथ मैं आज के दिन की शुरुआत करना चाहूँगी। वेरी गुड मॉर्निंग कतर, सिंपली आफरीन है, माइक से दिल तक बातें लेकर आती है। और मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो
1: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
0: नहीं, कौन बात कर रहा
1: है? पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
0: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
1: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
0: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
1: ओ मेरी बात
0: कौन
1: सुन,
0: बात कौन कर रहा है?
1: ओ महेश।
0: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
1: तो देख, जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
0: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
1: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
0: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
1: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
0: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
1: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
0: फिर वही बात को लेकर आ गया?
1: नहीं, मैं कोई बात को लेकर। और महेश मेरी बात सुन, अगर
0: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
1: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तो नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू मैंने
0: वाली बातें कर रहा
1: है क्या? मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहे। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
0: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
1: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
0: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
1: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
0: भाई तू है कौन?
1: नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
0: हाँ रॉन्ग नंबर है।
1: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ
0: राइट नंबर ले
1: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
0: अरे रॉन्ग नंबर,
1: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू
0: यार।
2: मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। शी कैन रीड योर माइंड, she will blow your mind. She is coming for the very first time.
4: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek sham, ek stage aur do kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: बन के।
1: देखो मैं कितने चलूंगी, मैं तो सुबह बस आप तक ही पहुंच सकती हूँ ना, मतलब मैं यहाँ स्टूडियो तक पहुंच सकती हूँ और पहुंच गई हूँ फिलहाल। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। इट इज 25th ऑफ अगस्त, ट्यूजडे का दिन है, हफ्ते का बीचों बीच दिन जो बहुत ही ऐसा लगता है स्लो चलता है। ऐसा लगता है क्या? मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज का दिन जो होता है ना, स्पेशली ट्यूजडे, बहुत लंबा लगता है कि यार ये दिन खत्म ही नहीं हो रहा है। एंड देन वेनसडे थर्सडे आर द क्विकेस्ट डे ऑफ द वीक आई फील विद दिस। चलिए गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग के मैसेजेस भी बहुत सारे आ गए हैं इधर, वो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। गुड मॉर्निंग टू माई फेवरेट फ्रीक्वेंसी, स्टार्टिंग माई डे विदाउट हियरिंग योर वॉइस फर्स्ट फील्स लाइक अ रेडियो विद नो सिग्नल। दैट्स अ स्वीट मैसेज, दैट्स थैंक यू इमरान, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग आफरीन, गुड मॉर्निंग आलिशान, गुड मॉर्निंग जी, आई होप यू हैव अ फैंटास्टिक डे एंड अ प्रोडक्टिव डे फ्रॉम हरपाल संधू फ्रॉम जिक्रीत। उसके अलावा गुड मॉर्निंग कहती है नाजनीन, और बस ऐसे ही बड़े ही अच्छे गुड मॉर्निंग मैसेजेस आए हैं। 5000 1896 इज आवर नंबर, और जरा चलिए गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग हो गया है तो वेदर की तरफ भी चलते।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
1: वेदर अपडेट, वेल वेदर देखो ये कह रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर इज 41 डिग्री सेल्सियस एज मिनिमम इज 32 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी की बात करें तो हाँ जी, ह्यूमिडिटी अभी भी अपने चरम पर है 58%, पर हालांकि शाम के वक्त वेदर थोड़ा सा बेटर लगने लगा है, विद दैट गिविंग अस अ पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक नोट, पॉजिटिव नोट के भाई चलो अब अच्छे दिन ज्यादा दूर नहीं है, एक महीने में तो मेरे ख्याल से सब अच्छा हो ही जाएगा। Moving ahead, हर्षदीप कौर की आवाज में अगला गाना रॉक स्टार मूवी से, वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज यार, इम्तियाज अली। मतलब मैं फैन हूँ इम्तियाज अली की बहुत बड़ी। Enjoy this, माइक से दिल तक आफरीन के साथ और मिर्शीद साथ।

0: अरिजीत सिंह और जॉनिटा गांधी की आवाज में ये गाना फ्रॉम द मूवी लैला मजनू अनदर आई फील, एक अंडररेटेड मूवी जो थिएटर्स में आई थी काफी साल पहले एंड देन ये लास्ट ईयर जब ये फिर से थिएटर में रिलीज की गई तब पब्लिक ने रियलाइज किया कि हाँ यार ये मूवी में दम तो था, हमने कैसे इसे नजरअंदाज कर लिया। इफ यू हैवंट वॉच दिस मूवी आई थिंक सो इफ यू आर इन टू दिस रोमांटिक टाइप्स तो ही आप जाकर देखिए। अगर आप वो एक्शन वाली मूवी पसंद करते हैं, हॉरर और थ्रिल वाली मूवी पसंद करते हैं तो this is not your cup of tea boss. Very good morning and welcome back. Simply Afreen ka saath hai right here on Mirchi Mornings. Aur dekhiye thoda sa Qatar Meteorology Department ye keh raha hai ki thoda dusty rahega aur thodi si jo visibility hai thodi si kam rahegi. So bhai dhyan se drive kariyega, fog aur ye jo dust hai wo kahin na kahin Qatar mein ye do din kahin badhne wali hai. So when you're driving on the roads please drive very very safely. Of late main jab bhi ghar jaati hu कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट्स मुझे नज़र कभी एक आधा नज़र आता है तो लाइक आई फील एट दैट टाइम के नहीं यहाँ पर वी हैव टू रियली वेरी ड्राइव सेफली एकदम ध्यान से ठीक है। सो विद दिस मूविंग अहेड टू अ नेक्स्ट ट्रैक जोश ब्रार और परंपरा टंडन की आवाज में
1: तू है पहली आदत मेरी और आखिरी तू ही है।
0: एंजॉय दिस ट्रैक माइक से दिल तक आफरीन के साथ और मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hello, Mirchi Helpline.
1: Hi there, what's up? Tell me.
0: खाना खाने के 2 घंटे बाद फिर से भूख लग जाती है. क्या करूँ यार, थक गया हूँ.
1: Oh man, it's so simple यार. घड़ी देखना बंद कर देना. Problem solve हो जाएगी. Fantastic.
2: खाने का खोपड़ी तोड़.

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: Well, मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफ्टरीन तो जुड़ गई है आपके साथ, लेकिन वक्त बताने के लिए मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 7 बजे की तरफ। फर्क लगाना मुसाफिर कैफे से विक्रांत मासी की ये नई OTT सीरीज जो बहुत ही ज्यादा चर्चे में है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई थिंक सो यू शुड चेक आउट फॉर समथिंग लव ट्राइंगल। अगर कुछ देखने हैं स्टोरी रोमांटिक, सो दिस इज फॉर यू।
0: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: Six. It's hot.
1: Well, latest gaane ke baad time hai to get into a nostalgic song. सोनू निगम की आवाज से बेहतर क्या हो सकता है, और सोनू निगम की 90s इंडी पॉप की प्लेलिस्ट से बेहतर भी क्या हो सकता है। इट्स कमिंग अप नेक्स्ट, चंदा की डोली, सोनू की आवाज।

0: What a beautiful song that was, सोनू निगम की आवाज में, right here on मिर्ची। और चलिए जरा बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, आपको क्या लगता है मुझे ये बताइए कि कोई कंट्री डिजिटली कितनी एडवांस्ड है, ये डिसाइड कैसे होता होगा? देखो, सिर्फ इंटरनेट फास्ट है तो कंट्री डिजिटल चैंपियन बन जाती है? नो, ऐसा नहीं होता है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफ्रिका का साथ है राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और इसके लिए ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, एक ICT डेवलपमेंट इंडेक्स निकालती है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये कंट्रीज का डिजिटल रिपोर्ट कार्ड समझ लीजिए। कितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं, कितने होम्स कनेक्टेड होते हैं, मोबाइल्स और ब्रॉडबैंड की एक्सेसिबिलिटी क्या है, कनेक्टिविटी अफोर्डेबल और मीनिंगफुल है या नहीं, इन सब को मिलाकर 100 में से स्कोर मिलता है। अब बड़ी खबर पर आते हैं।
1: क्या खबर कतर?
0: खबर तो ऐसी है कि कतर का 2026 स्कोर इज अ व्हॉपिंग 98.4 आउट ऑफ 100। क्या बात है, देखिए। और ये नंबर तब और इम्प्रेसिव लगता है जब आप जानेंगे कि ग्लोबल एवरेज 79 है। यस, टॉपर निकला क्लास में कतर हमारा। सो वेल, इंटरनेट यूजेज, होम्स विद इंटरनेट, मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन, 3G 4G कवरेज और मोबाइल ओनरशिप जैसे सेवरल इंडिकेटर्स में कतर ने 100% नॉर्मलाइज्ड स्कोर रिकॉर्ड किया है। और मेरे लिए इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हम कतर में इस डिजिटल कन्वीनियंस को इतनी आदि हो चुके हैं कि हम इससे अचीवमेंट इतना आसानी से समझते नहीं है, अनलेस वी नो दीज रिपोर्ट्स एंड वी नो दीज ऑल दीज फैक्ट्स विद नंबर्स। वैसे एक क्लिक में यहाँ पर बिल पे कर दिया, बुकिंग, बैंकिंग, गवर्नमेंट सर्विस, सब कुछ एक क्लिक में ही तो हो जाता है। कभी कभी डेवलपमेंट वो होता है जो दिखता नहीं, बस लाइफ को सीमलेसली ईजी बना देता है। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ शंकर महादेवन की आवाज में, अग लगाना फ्रॉम द मूवी रॉकफोर्ड, जो हमने 90s के दौर पर देखी तो थी और बिल्कुल रिलेटेबल लगी थी, बिकॉज यार स्कूल की कहानी थी। याद आ रहा है आपको कुछ? और मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vida para burga.
1: Energy, burga. Hello.
2: Hello.
1: कौन?
2: हेलो विपिन,
1: कौन बोल रहा है?
2: इस्ता, इस्ता, इस्ता, इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ, आपने

0: इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात, और तुम स्पीकर फोन पे हो, जरा सा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तो क्यों आवाज़ें आ रही है। मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है, आप बताओ कब किया था?
1: अभी पहले किया था।
0: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी, आप खुद आए थे?
1: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी।
0: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
1: जाना जरूरी है?
0: कहाँ जा रहे हो?
1: दुबई।
0: अच्छा तो दुबई जाना है
1: भाई, जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
0: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
1: हाँ ठीक है ठीक है,
0: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
1: आपने सही कह रहा
0: है। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए।
1: नहीं बोलना, नहीं बोलना।
0: भाई साहब एक बात बताऊं?
1: बताओ।
0: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
1: तो पागल है क्या?
0: चिल्लाओ मत, ठीक है मैं रखता हूँ।
1: करवा देना भी है आपसे।
0: मरवाओगे क्या, उठ जाएंगे।
1: सॉरी सॉरी सॉरी।
0: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
1: ओके ओके,
0: आई लव यू,
1: आई लव यू टू।
2: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर। शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप।
5: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
4: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah.

से ये गाना और हाईवे से मुझे याद आ रहा है कतर के रास्ते। क्योंकि देखो बॉस, ये जो खुले खुले रास्ते आपको मिल रहे हैं ना, अब ये बस कुछ ही दिन के देन है आपके लिए। मतलब बस सोच लीजिए, अगले मेरे ख्याल से अब 5-6 दिन, 1 हफ्ता, नॉट मोर देन दैट, है ना। उसके बाद ये हफ्ता ही समझ लीजिए कि आपको ये खाली खाली रास्ते मिलने वाले हैं। और उसके बाद हमारे बच्चों की स्कूल्स होने वाली है शुरू, तो बस क्या पिकअप, ड्रॉप्स, बसेस, ये सब कुछ हमारे कतर के रास्ते पर फिर से आ जाने वाले हैं। एंड वो कहते हैं ना, हमारी कतर की रौनक जो है वो फिर से लौटने वाली है। हैविंग सेड दैट, जहां बैक टू स्कूल की मैंने बात की है, और ऐसा हो सकता है कि हम मिर्ची टीम बच्चों को स्कूल वापस भेजेंगे विदाउट डूइंग एनी मस्ती, मजाक और धमाल, नॉट पॉसिबल। सो वेल, मिर्ची का बैक टू स्कूल इवेंट भी थर्सडे को होने वाला है, दैट इज 27th of August, और इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशंस खोली थी। और रजिस्ट्रेशंस खोलकर इतना मैसिव रिस्पॉन्स हमेशा की तरह, थैंक यू सो मच फर्स्टली फॉर दैट। वैसे आप जा सकते हो मिर्ची वन कतर पेज पर, जा सकते हो इंस्टाग्राम पर, वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी अबाउट दिस इवेंट। मीनवाइल हरनोर श्रेया घोषाल की आवाज में अगले गाने की तरफ आगे बढ़ते हुए, और बस कुछ गाने के उस पार, इस ब्रेक के उस पार मैं मिलूंगी आपको फिर से लाइट कैमरा सीन टेस्ट के साथ। सो यू आर स्टे ट्यून्ड विद मी, दैट इज माय सिद्धुल तकाफरीन ऑन मशीन्स हॉट।

0: Well, what a song, yeah. Farhan Akhtar ki movie Bhaag Milka Bhaag se ye gana tha. Right here on Mirchi. Suki Paaji ne gaya tha. Loy Mendoza ne gaya tha. So yes, kahin na kahin mujhe aisa lagta hai ki Farhan Akhtar is a very good fit for certain type of characters. Aur wo abhi tak mujhe lagta hai ki unhone jitne bhi roles unhone play kiye hain, act kiye hain, he's given his 100% and our public has loved it. And I feel ke yaar Farhan Akhtar bahut time ho gaya hai. Koi to ek movie chahiye tumhari. Very good morning and welcome back. Simply Afreen ka saath hai. Right around Mirchi Mornings and well, it's time ke hum yahan par wo game khele jise main kehti hu light camera scene test. And ho sakta hai ye jo sawal hai kuch ke liye bahut aasan ho aur kuch ke liye thoda sa soch mein dal de. Jahan tak mujhe lagta hai ki zyadatar logo ko ye aasan hi lagne wala hai. So radio sets ke volume karo high aur dhyan se ye scene suno aur batao bhai kaun si movie se hai ye.
1: Light camera scene test. Scene test.
2: क्या नाम है उसका?
3: अब क्या नाम बतलाऊं? पूछते हैं वो कि गालिब कौन है? कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या?
0: हाय हाय, चले चले चले, बताएं आप, अब आप बतलाएं कि ये है कौन? 5000196 कौन सी मूवी का ये सीन है? यहाँ पर आके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 5000196 पर, हमें मैसेज करके बता सकते हैं लाइक कौन है ये. आप वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं, लेकिन अपना नाम जरूर बताइएगा क्योंकि मुझे पता लगता है कि भाई कौन हमें सुन रहा है. सो आपने एक्टर का नाम बता तो दिया है कुछ लोगों ने, लेकिन मूवी का नाम बताना भी तो जरूरी है ना. ठीक है, सो हियर वी गो टू अ नेक्स्ट ट्रैक. कविता सेठ और नीरज श्रीधर की आवाज में फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2. एंजॉय इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: Sony Razdan, Alia or Shaheen, in dono mein se, who's most likely to listen to you even today?
2: Difficult one.
3: Why?
2: Split between my children. So both of them in different ways.
3: Yeah.
2: But yeah, they are receptive generally. But I think I must be irritating them a lot because I give too much advice. That's what you tell me. So kya bolu aapko?
1: Sony Razdan, aapne koi jawab nahi diya. आलिया या शाहीन किसी का नाम नहीं लिया. अगली बार जब आप आएंगे हम फिर से ये सवाल पूछेंगे. यू आर लिस्निंग टू मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए. मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स. अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो.
5: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live.

0: देखो बॉलीवुड में ऐसा बहुत रेयर होता है जब विलन को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन और सिंपैथी मिलती है फ्रॉम द ऑडियंस देन द हीरो। और इसी रेयर पिक्चर के बारे में हम बात करेंगे, विस्तार में करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको जवाब देना होगा ना इस मूवी का। सो हम खेल रहे हैं यहाँ पर लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट, जहाँ पर मैंने एक सीन सुनाया था, आपने गेस करना था बॉस ये सीन है कौन सी मूवी से।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट
2: क्या नाम है उसका?
3: अब क्या नाम बतलाऊं? पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या।
0: ओए हाय क्या बात है। विद दिस बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर आए हैं, लेट्स हियर द राइट आंसर।
4: गुड मॉर्निंग फ्रेंड जी।
0: गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक। आप कैसे?
4: ये मूवी है डर, शाहरुख खान और सनी देओल है।
0: ओके
5: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग।
5: शाहरुख खान फ्रॉम डर
0: मूवी।
5: ऑल राइट, गुड डे, माय नेम मनाली।
0: ओके, मनाली अकेले नहीं है, बच्चों के साथ है, उनका भी मैसेज है, जरा सुन लेते हैं।
6: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग।
6: गोइंग टू माय स्पोर्ट्स कैंप।
0: हाउ नाइस।
6: आई ऑलमोस्ट लिसन टू यू एवरी डे
0: व्हेन
6: आई गो टू स्कूल एंड कैंप।
0: आई होप यू आर हैविंग फन इन द कैंप एंड लर्निंग अ लॉट। सो वेल, यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस रिगार्डिंग द मूवी आए हैं, बैक टू दिस मूवी, जहाँ यहाँ अभी फिलहाल किसका मैसेज है, मोहसिन का मैसेज है, देन आई हैव योर मोहम्मद खान हुज मैसेजेस, देन आई ऑल्सो हैव संजीवा हुज मैसेजेस, कुमार का मैसेज आया है, मनाली का हमने सुनाया आपको, ऋषि का मैसेज है, अरफात का मैसेज है, देन आई ऑल्सो हैव डिएगो, डिएगो ने गलत जवाब दिया है, and then we also have Mohammad Yusuf Khan jinka galat jawab hai and Charlie jinka sahi jawab hai. With this dar ke bare mein agar main baat karu to main usse pehle aapko ye batana chahungi ki yahan do gaane ke option hai, pehle to ki aap sunna kya pasand karoge. Option 1 is
7: jadoo teri nazar khushboo,
0: aur option 2
7: tu mere samne,
0: वही नंबर 5000186 पर बताइए ऑप्शन वन या ऑप्शन टू। और जब तक कि आप बताते हो, आई शुड टेल यू कि ये डर मूवी का आइडिया आया था पता है किससे? ये आया था ऋतिक रोशन से। कैन यू बिलीव दैट? एक्चुअली जब ऋतिक रोशन और उदय चोपड़ा एज यंग किड्स और यंगस्टर्स ये दोनों एक मूवी देख रहे थे, डेड काम, 1989 की बात है ये, तब ये मूवी का आइडिया यश चोपड़ा जी को आया, एंड ये जो डर का टाइटल है इट वाज गिवन बाय ऋतिक हिमसेल्फ। मतलब यार दुनिया बड़ी छोटी है, बड़ी गोल है, सब घूम फिर के वहीं पर आ जाती है बात। और डर मूवी में शाहरुख खान का किरदार बहुत सारे लोगों के पास गया था, आमिर खान, अजय देवगन, बट एवरीवन ऑब्वियसली रिजेक्टेड कि नहीं भाई विलन कौन बनेगा, करियर खराब करना है क्या? बट शाहरुख खान ने ये डेयर डेविल रोल ले लिया और ये रोल उनके फायदे में भी आ गया, क्योंकि उसके बाद में सनी देओल कहीं ना कहीं नहीं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा ओवर शैडो हो गए हैं। सो वेल, यहाँ पर डर की बात तो हमने बता दिए हैं और बहुत लोगों के मैसेजेस आए हैं। कुमार ने बताया कि भाई ऑप्शन वन गाना ही हमें सुनना है, एंड ऐसे ही चार्ली का भी यही बात है, यही कहना है, सो प्लेइंग दैट सॉन्ग उदित नारायण की आवाज में। दिस गाना डेडिकेटेड टू ऑल द किरण, किरण जो हमें सुन रही है। माइक से दिल तक आप श्रीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: और मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन का साथ है आपके साथ और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 8:02 की तरफ फर्क लगाना अरिजीत सिंह की आवाज में राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर

0: वेल, अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। और क्या होता है ना कि बॉलीवुड में कभी कभी फिल्म अनाउंस होने से पहले कास्ट अनाउंस हो जाती है, वो भी कास्ट को पता चले बिना। तो सुनना चाहोगे बॉलीवुड की कुछ अंदर की बात?
1: मिर्ची स्पॉट बॉय, बॉलीवुड की अंदर की खबर। आफरीन मैडम, पता है क्या?
0: Well, मुझे तो पता है, लेकिन क्या आपको पता है पिछले कुछ दिन से बॉलीवुड कॉरिडोर्स में फुल बस था कि ब्रह्मास्त्र 2 में दीपिका पादुकोण अमृता का कैरेक्टर प्ले करने वाली है। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और दीपिका हेडलाइंस ऑलमोस्ट कास्टिंग को कंफर्म मानकर चल रही थी। बट होल दैट एस्ट्रोवर्स, दीपिका की टीम ने अब ऑफिशियली क्लैरिफाई कर दिया है कि दीपिका ब्रह्मास्त्र 2 का हिस्सा नहीं है इन एनी कैपेसिटी। तो फिलहाल देव कौन, अमृता कौन, मिस्ट्री अभी भी बाकी है, बिल्कुल है। एंड नो टू सेल्फ, बॉलीवुड में जब तक एक्टर या मेकर्स हाँ ना बोल दे कास्टिंग न्यूज को रिश्ता पक्का मत समझना। वेल, ऐसे ही बॉलीवुड की अंदर की खबर लेकर आती रहूंगी मैं राइटर, साथ ही साथ कतर की खबर भी ऑन मिर्ची। माइक से दिल तक आफ्टरनून के साथ बने रहिएगा और प्लेइंग नेक्स्ट सुनो निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में फना मूवी का ये गाना। अब ये गाना सुनकर ना I just feel like I have to go to Kashmir. या कोई स्नो वाली जगह भाई, कतर के गर्मी से बचने।
2: मेरे हाथ में।
0: Enjoy this on Mystery, it's hot.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: 89.6, 89.6,
2: it's hot.

0: Mirci.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La vieva la burga. Mirci, burga.
2: हेलो
3: हेलो
2: हाँ जी
3: विवेक जी
2: हाँ जी बताइए
3: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं
2: या ऑफ कोर्स
3: विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है सब कुछ है हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं लेकिन अभी क्या हो रहा है ना सोसाइटी में बातें हो रही थी मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना लोग ले रहे हैं मजे अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की चिल्लम चिल्ला हो रही थी विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ इस चीज का ना थोड़ा ख्याल रखो यार मतलब हमें लगता ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज ग्लास व्लास से क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना और इन सब का काम पता है क्या मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ये लेते हैं मजे सारे मजे लेते हैं लेकिन ऐसी बातें करेंगे देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती हमारी भी हुई होगी लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए
2: हाँ ठीक ही कह रहे हो
3: नहीं मैंने तो देखिए मैंने हमदर्दी में कहा है ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा मुझे भी कई बार गुस्सा आता है मेरी वाइफ से हो जाती है लेकिन क्या होता है ना ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है ये सब मजे लेते हैं
2: अब आपको पता ही है हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है एक सोसाइटी वाले इतने अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने
3: अच्छा
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है मेरे को समझ नहीं आता हमारा घर है हम जो मर्जी करें
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो मैं ध्यान रखना
3: थोड़ा ख्याल रखना मिलते हैं किस दिन हा?
2: हाँ हाँ जरूर जरूर आपसे जरूर मिलेंगे
3: क्या हुआ क्या था भाभी से यार आपकी बात क्या हो गई थी
2: अरे कुछ नहीं यार
3: नहीं फिर भी क्या मतलब काफी चीखी हुई आवाज है क्या हुआ क्या था
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की
3: अच्छा अच्छा
2: उस टाइम पे मैं घर आया मैं थोड़ा ड्रंक था उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया
3: अच्छा ये कलेश ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ
2: चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत
3: आप कह रहे हो चिल्लाई चिल्ला के बोला क्या आपको आप बताओ ना मजे आ रहे हैं मेरे को बताओ ना क्या हुआ फिर
2: मजे आ रहे हैं
3: बताओ ना क्या बोला क्या बोला
2: अरे तो मजा आ रहा है यार तू मजे ले रहा फोन करके
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुर्गा बना रहा था आपके
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ only on मिर्ची it's hot
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. शाम एक स्टेज और दो कमाल टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर प्रेजेंटेड बाय आईपे
8: लाया आईपे
7: 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. शाम एक स्टेज और दो कमाल टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर

जानते हो, ये सिर्फ एक लाइन ना गाने को इतना डीप और मीनिंगफुल बनाता है कि कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है, ना मिलना भी बहुत जरूरी होता है, एंड दैट्स सो ट्रू। वेल, पापॉन की आवाज में सुल्तान मूवी का गाना आपने सुना, राइटर अनमिर्ची, और जुड़ गई है आपके साथ आफरीन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और जितने करीब हम इस तारीख के आ रहे हैं और देख रही हूँ मैं, उतना ही आपका यहाँ पे मुनाफा नजर आ रहा है मुझे।

वेल सैलरी के करीब आ रहे हैं और यहाँ पर एक्सचेंज रेट भी अच्छे नजर आते हुए दिख रहे हैं. जैसे एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.26. यस, ये बढ़िया है. वही जनाब, पाकिस्तानी रुपीज इज एट 76.19. बांग्लादेशी टाका इज एट 33.67. वही श्रीलंकन रुपीज इज एट 90.39 एंड नेपाली रुपीज इज एट 41.92. ये थे आज के एक्सचेंज रेट. घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां और खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला, वन एंड ओनली 89.6 मिर्ची वन. सुनते रहेगा मिर्ची, इट्स हॉट.

ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर. शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप.

वेलियो ये हनी सिंह की आवाज में सिमरन कौर का साथ और ईश्वर का साथ ये गाना राइट हियर सोनू के टिटू की स्वीटी आई थिंक सो मैंने सही कहा वेरी गुड मॉर्निंग कतर एंड वेलकम बैक सिंपली आफरीन जुड़ गई है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स और इट्स टाइम कि हम हमारा मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स खोले मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स से वो सवाल निकला है जो आप लोग को अक्सर पसंद आता है और वो ये है कि तीन मूवी का कनेक्शन मतलब एक मूवी से दूसरी मूवी से तीसरी मूवी ये तीनों मूवी को हम कनेक्ट करते हैं आपने गेस करना होता है एक नहीं दो नहीं तीन मूवी आपने गेस करना है और आप ना वॉइस मैसेज करके भी भेज सकते हैं ज्यादा ईजी हो जाता है ना। तो आज का सवाल कुछ ऐसा है ठीक है वो कौन सी मूवी है जिसमें एक छोटी सी बेटी अपने पापा की कॉलेज वाली बेस्ट फ्रेंड को ढूंढ कर उनकी अधूरी लव स्टोरी कंप्लीट करने निकलती है उस फिल्म के हीरो किसी और मूवी में अपना घर छोड़कर लंदन में रहने लगता है क्योंकि उसके फादर ने उसकी शादी को एक्सेप्ट नहीं किया और इसी मूवी में उसका जो छोटा भाई का किरदार प्ले कर रहा है वो किसी और मूवी में बिहार का मैथ्स टीचर बनकर इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स को आईआईटी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करता है। मजा आया ना अभी मजा आएगा बताओ कौन सी मूवी है ये 5000 1896। चलो आपके लिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर लेती हूँ मेरा सवाल वो कुछ ऐसा है कि बताओ वो कौन सी मूवी है जिसमें एक छोटी सी बेटी अपने पापा की कॉलेज वाली बेस्ट फ्रेंड को ढूंढकर उनकी अधूरी लव स्टोरी कंप्लीट करने निकलती है उस फिल्म के हीरो किसी और मूवी में अपना घर छोड़कर लंदन में रहने लगता है क्योंकि उसके फादर ने उसकी शादी को एक्सेप्ट नहीं किया और इसमें इसका जो छोटा भाई का किरदार प्ले कर रहा है वो किसी और मूवी में बिहार का मैथ्स टीचर बनकर इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स को आईआईटी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करता है। 5000 1896 इज आवर व्हाट्सएप नंबर फटाफट से कर यहाँ पर बताओ जवाब और तब तक के लिए गाना सुनो विशाल ददलानी की आवाज में राइट हियर ऑन मिर्ची।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: सिर्फ बंगाल के नहीं हिंदुस्तान के हिट हीरो, नाम है इनका जीशु सेनगुप्ता। इनसे एक बार पूछा गया,
3: Who's most likely to die to protect you? अपनी जान दे देंगे लेकिन आपको जरूर बचाएंगे।
4: I have few people, yes. Yeah. I can say they're my friends, they're my family. Like at least two people that I know. I'm not naming them, but they know
3: who they are.
4: Two people, they will die for me. Yeah, I'm blessed. I'm blessed.
2: जीशु सेनगुप्ता, उस टू की लिस्ट में एक और नाम जोड़ दीजिए, थ्री कर दीजिए, because I will also. Yeah, you are listening to Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
6: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
5: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live in

0: अरिजीत सिंह की आवाज में मेट्रो इन दिनों का ये गाना वन ऑफ द अंडररेटेड सॉन्ग आई फील। और अगर ये गाने को आप फिर से थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, थोड़े लिरिक्स पर ध्यान दोगे ना, तो दिस सॉन्ग हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड डीप मीनिंग। और मेरे पर्सनल प्लेलिस्ट से मैंने ये गाना आपके लिए आज खास सुना है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आप इनका साथ है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए भाई, बहुत सारे जवाब आए हैं किस चीज के, पहले वो तो बात कर ले। मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स से आज एक ऐसा सवाल निकला है जो बॉलीवुड की तीन मूवीज को कनेक्ट करता है। ये कौन सी मूवीज है ये तो आप ही बताओगे, मैं थोड़ी ना बताऊंगी। सो हियर आर द हिंट्स, इट गोज लाइक, वो कौन सी मूवी है जिसमें एक छोटी सी बेटी अपने पापा की कॉलेज वाली बेस्ट फ्रेंड को ढूंढकर उनकी अधूरी लव स्टोरी कंप्लीट करने निकलती है। उस फिल्म के हीरो किसी और मूवी में अपना घर छोड़कर लंदन में रहने लगते हैं क्योंकि उनके फादर ने उनकी शादी को एक्सेप्ट नहीं किया होता है। फिर इसी फिल्म के इनके छोटे भाई किसी और मूवी में एक बिहार के मैथ्स टीचर का किरदार प्ले करते हैं जो इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स को आईआईटी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करता है। बताइए बताइए कौन सी मूवीज है ये। 5000196। फिलहाल अगर आप मैसेज करोगे तो मैं आपका वॉइस मैसेज तो नहीं यहाँ पर सुना सकती हूँ, लेकिन हाँ मैसेज पढ़ तो जरूर सकती हूँ और आपका नाम जरूर सुना सकती हूँ। लेट्स हियर द आंसर्स।
1: Hi, Afreen. Good morning. This is Prince here.
0: हाँ जी प्रिंस।
1: The first movie is कुछ कुछ होता है।
0: All right.
1: Second movie is कभी खुशी कभी गम।
0: Okay.
1: And the third movie is Super 30.
0: That is
1: Thank you
0: right.
1: and have a lovely day.
0: You too have a lovely day.
2: Hello.
0: Yeah.
2: Good morning.
0: Mirchi. Good morning.
2: So this is a nice question. The first movie is कुछ कुछ होता है।
0: Okay.
2: Where the daughter goes to search for kajol for Shahrukh Khan.
0: बिल्कुल।
2: The second movie is K3G.
0: बिल्कुल सही।
2: कभी खुशी कभी गम, in which शाहरुख खान लीव्स अमिताभ बच्चन's home to live in London, and his brother played by Ritik Roshan, who
0: That's
2: in Super 30
0: right.
2: plays the teacher who trains IIT students.
0: That's absolutely
2: Thank you, Dr.
0: right.
2: डॉक्टर
0: संजीव, आपने तो पूरी तरह से इसे डीकोड कर लिया है। ये भी बता दें कि इन्होंने पूरे तीन बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। ताहिर ने यहाँ सही जवाब दिया है, मोहम्मद यूसुफ खान का बिल्कुल सही जवाब है। देन आई हैव समवन हियर जिनका मुझे नाम नहीं पता है, मोहम्मद फारूक, यस इनका भी बिल्कुल सही जवाब है। देन आई हैव हु इज हियर सलीम का बिल्कुल सही जवाब है। और बस इसी तरह बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मैसेज किए हैं विद राइट आंसर्स। और जहां हमने इतनी सारी मूवीज की बात की है, K3G, कुछ कुछ होता है, सुपर 30, बट आई एम गोना प्ले अ सॉन्ग विच इज फ्रॉम सुपर 30, उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में। आई लाइक दिस ट्रैक, एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सा गाना। माइक से दिल तक आफरीन के साथ और मिर्ची इट्स हॉट।

0: विंडोज एनर्जी रखना फुल, क्योंकि मिर्ची लेके आ रहा है पार्टी सुपर कूल। सेट योर ड्रीम, सेट योर गोल्स, कॉन्फिडेंस का टूल। अब टाइम आ गया है सबको जाना होगा स्कूल, सो ज्वाइन करो ये पार्टी, ये होगी सुपर कूल। Cause it's time for मिर्ची बैक टू स्कूल, Cause it's time for मिर्ची बैक टू स्कूल।
1: Driven by Suzuki Qatar. Back to school, back to office. Go with Suzuki. Choose from a range of safe, fuel-efficient and reliable cars. Time-tested in Qatar for over 50 years.
2: Visit Suzuki Qatar showroom by Taseer Motors, Airport Road, Doha.
3: Hello, Mirchi Helpline?
4: Yes, of course. Mirchi Helpline, bataiye.
3: Mera boyfriend bahut faltu ke kharche karta hai. It's very concerning. मैं क्या करूं?
4: अरे तो उसको बोलना तेरे से ब्रेकअप कर ले, अपने आप खर्चा कम हो जाएगा डार्लिंग।
5: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: वेल मिर्ची वन पर आफरीन जुड़ गई है आपके साथ ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग 25th ऑफ अगस्त ट्यूसडे का दिन मिर्ची मॉर्निंग्स पर और फिलहाल मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 9:02 की तरफ. सुबह शर्मा की आवाज में अगला गाना आपके लिए इंतजार कर रहा है और उसके उस पार मैं फिर से लौटूंगी कुछ अच्छी बातों के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
0: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

सुबोध शर्मा की आवाज में ये गाना, राइटर और मिर्ची। और जरा बात करते हैं अबाउट रियलिटी शोज। वी हैव एक्चुअली ग्रोन अप वॉचिंग अ लॉट ऑफ रियलिटी शोज। नहीं मतलब अगर सिंगिंग रियलिटी शो की बात करें, सारे गवा पास से मेरे ख्याल से मैंने शुरुआत की थी एक एक्चुअल रियलिटी शो देखना। उसके बाद में इंडियन आइडल आया, देन आए इन माई कॉलेज आई यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ रोडीज एंड स्प्लिट्सविला। वेल यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे कोई और रियलिटी शो। हाँ, बिग बॉस भी तो आया था। बिग बॉस ने तो आगे रियलिटी टीवी का पूरा ग्रामर ही चेंज कर दिया था। बट ऑनेस्टली मैं काफ़ी टाइम से रियलिटी शोज ना ट्रैक नहीं कर रही थी Until I got hooked onto The Traitors। अगर आपने दोस्तों के साथ ये माफिया गेम खेला है ना, तो समझ जाओ सेम फैमिली का गेम है, बस यहाँ बजट पैलेस और पैरानोया तीनों अपग्रेड हो गया है। करण जौहर होस्टिंग द ट्रेटर्स और ये सीजन 2 है जिसमें 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स हैं और गेम बेसिकली ट्रस्ट वर्सेस धोखा है। कुछ कंटेस्टेंट सीक्रेटली ट्रेटर्स है, बाकी सारे इनोसेंस है। ट्रेटर्स रात को प्लेयर्स को एलिमिनेट करते हैं और इनर सेंस को डिटेक्ट करना है, डिटेक्टिव बनकर, और फिगर आउट करना है कि यार ये अपनों में फरेवी कौन है। इट गेट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड द कास्ट इज आल्सो क्वाइट फैसिनेटिंग, जहां मुनव्वर फारूकी, दिया चक्रवर्ती, रणवीर राज द शेफ, यस श्वेता तिवारी भी है, मल्लिका शेरावत है, शालिनी पासे, दलीप तहिल है, एंड देन सो मेनी मोर। यार एक ही पैलेस में इतनी डिफरेंट पर्सनैलिटीज, तो ट्रस्ट इशूज कॉम्प्लीमेंट्री मिलने ही थे। वेल करण जौहर इज डूइंग अ फेयरली ओकेश जॉब, बट फॉर मी द फॉर्मैट ऑफ द गेम इज द रियल स्टार। हर कॉन्वर्सेशन में लगता है ये जेन्युइनली दोस्त बन रहा है या अगला नंबर इसी का है। इट इज समथिंग वेयर यू आर गोना हुक्ड ऑन टू। ठीक है, प्राइम वीडियो पर ये आता है, एपिसोड्स नए जो होते हैं इट ड्रॉप्स इन एवरी थर्सडेज। फिलहाल तो आई एम टोटली हुक्ड टू दिस रियलिटी शो। और जहां रियलिटी शो की बात आ रही है, आपने ये देखा है क्या पहले टेल मी इफ यू आर वॉचिंग द ट्रेटर और हैव यू हर्ड अबाउट इट एंड यू आर प्लानिंग टू वॉच इट, लेट मी नो अबाउट इट। एंड एक ये चीज मुझे बताइए कि आर यू अ रियलिटी शो पर्सन, ये मुझे जानना है। और वो 5000 1896 पर आकर आप बता सकते हैं। मीनवाइल रियलिटी शो की बात करें तो मुझे कतर वाला एक एपिसोड भी याद आ रहा है, एक रियलिटी शो का। सडनली मुझे याद आया कि आपको पता है क्या, एक रियलिटी शो में कतर भी बताया गया था। श्रेया घोषाल, अरमान मलिक की आवाज में ये अगला गाना दे जा रही हूँ, दिमाग में एक हिंट देकर। अनवर शीट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana, rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Mirci, burga.
2: हेलो संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं।
3: हाँ जी बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी डीडीए से बोल रहा हूँ, आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना,
3: तो हुआ कैसे है? मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
2: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना, अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको।
3: कितने का ड्राफ्ट है मेरा?
2: 7,500 रुपए का।
3: अरे भाई साहब मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
2: नहीं नहीं सर ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
3: किस चीज की फीस?
2: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
3: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मेरे मतलब इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
2: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
3: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
2: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
3: ये भी तुम ही देख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
2: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे हम।
3: भाई आप ही रखो यार, ये आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, ये बीच में रख लो हमें ज्यादा।
2: अरे यार
3: आप ढूंढ रहे हो पब्लिक को यार।
2: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो काम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी आप मुझे बताइए, आप मुझे आप वैसी टेंशन में लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
3: बोलो बोलो
2: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू ऐड द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

ये गाना राइट हियर ऑन मशी। और अच्छा एक बात बताओ, आपके फोन में भी ऐसे प्रमोशनल मैसेजेस तो आते होंगे ना, जिनको देखकर आप सोचते हो कि भाई मैंने तो इन्हें अपना नंबर दिया भी नहीं था। अच्छा कई बार ब्लॉक करो फिर किसी दूसरे नंबर से शुरू हो जाते हैं। वेल कतर में अब ऐसे मैसेजेस को सिर्फ इग्नोर नहीं प्रॉपरली स्टॉप करवाने का भी एक तरीका है। वेरी गुड मॉर्निंग। और अच्छा एक बात बताओ, आपके फोन में भी ऐसे प्रमोशनल मैसेजेस तो आते होंगे ना, जिनको देखकर आप सोचते हो कि भाई मैंने तो इन्हें अपना नंबर दिया भी नहीं था। अच्छा कई बार ब्लॉक करो फिर किसी दूसरे नंबर से शुरू हो जाते हैं। वेल कतर में अब ऐसे मैसेजेस को सिर्फ इग्नोर नहीं प्रॉपरली स्टॉप करवाने का भी एक तरीका है।

सबसे पहले उस सेंडर या ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टैक्ट करके क्लियरली ऑप्ट आउट कीजिए, मतलब बोलिए कि मुझे प्रमोशन मैसेजेस नहीं चाहिए। लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, अगर आपने मना कर दिया है फिर भी मैसेजेस आते रहे या ऑर्गेनाइजेशन आपकी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स ही ना दे, तो बात वही खत्म नहीं होती है। आप नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी के पर्सनल डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में ऑफिशियल कंप्लेन कर सकते हैं उनके डेडिकेटेड कंप्लेन फॉर्म के थ्रू। मतलब अगली बार सिर्फ मैसेज डिलीट करके इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। Your number, your data, it's your choice. और हाँ, stop बोलने का हक सिर्फ relationships में नहीं होता है, promotional messages में भी होता है। अरिजीत सिंह की आवाज में अगला गाना waiting for you। Mic से दिल तक आप श्रीन के साथ बने रहिएगा।

decades of excellence in Qatar. घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल। और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।

0: पंकज तिवारी की आवाज में आशिकी 2 का ये गाना, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। एंड मतलब अंकित की आवाज में वो जुनून बिल्कुल सुनाई दे रहा था हमें। एंड व्हाट अ मूवी यार। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और अगर आप इस वक्त पर हमें हमेशा सुनते हो तो आपको पता है कि आफरीन अपनी डायरी से कुछ अल्फाज ज़रूर सुनाती है, और आज के अल्फाज कुछ ऐसे हैं।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है जॉन एलिया साहब के ये लाइंस मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे कि इश्क उससे करो जिसमें खामियाँ बहुत हो, इश्क उससे करो जिसमें खामियां बहुत हो, ये हुस्न से भरे चेहरे इतराते बहुत है। इश्क उससे करो जिसमें खामियां बहुत हो, ये हुस्न से भरे चेहरे इतराते बहुत है, और मोहब्बत रूह से होनी चाहिए, मोहब्बत रूह से होनी चाहिए, ये लफ्ज़ से जताने वाले, ये लफ्ज़ों से जताने वाले रुलाते बहुत है। सच ऐसा होता है क्या? माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ। अगला गाना उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: Delhi Belly, Jalsa, Brown जैसे content के creator. मिस्टर अभिनय दियो
2: मोस्ट लाइकली टू रिमूव बाल की खाल मतलब तह तक जवाब वो बताओ
3: वेट
2: टेल
3: आई हैव अ लिस्ट भयंकर समय लग जाएगा तो उसके अंदर ना घुसने तो ही बेटर है बट मेरे सब लोग आजू बाजू में वही हैं सब बाल की खाल निकालने वाले ही हैं कंटिन्यू व्हाट आई मीन ही इज पास्ड अवे बट माय फादर माय गॉड एनीथिंग दैट आई डू एनीथिंग दैट एनी स्क्रिप्ट हैज सेड बट ऐसा क्यों अरे भाई साहब फिल्म है इमेजिन नो बट व्हाई एंड ही वाज अ फिल्म मेकर एन एक्टर हिमसेल्फ
1: अभिनय दियो द डायरेक्टर इज टॉकिंग अबाउट हिज फादर रमेश दियो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स द हिंदी एंड द मराठी सिनेमा हैज सीन आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: मुझे ना मराठी लैंग्वेज में अलविदा कहने का तरीका ना ज्यादा अच्छा लगता है। जब किसी को मिलकर आप जाते हो तो जनरली कहते हो ना गुड बाय, चलो बाय, मा सलामा एंड स्टफ लाइक दैट, लेकिन मराठी में ना जनरली कहते हैं
1: नशे सी चढ़ गई कुड़ी, नशे सी चढ़ गई।
0: मुझे ना मराठी लैंग्वेज में अलविदा कहने का तरीका ना ज्यादा अच्छा लगता है। जब किसी को मिलकर आप जाते हो तो जनरली कहते हो ना गुड बाय, चलो बाय, मा सलामा एंड स्टफ लाइक दैट, लेकिन मराठी में ना जनरली कहते हैं, और वो इंसान के साथ भी हो सकता है जिसको शायद आप ना मिलने वाले हो, या फिर कोई ऐसा दोस्त जिसको आप महीने सालों बाद मिलने वाले हो, बट दैट वन गुड बाय सेइंग विद अ पॉजिटिविटी कि हाँ यार चलो बाय मिलते हैं, तो बस ऐसे ही कहना चाहूंगी मैं भी कि यार बाय बाय, मा सलामा, मिलते हैं जल्द ही। तब तक के लिए आप ऐसे ही बहुत खुश रहिएगा, और जब आप खुश रहते हो ना तो बस सब सेट है बस। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा और सुनते रहिएगा मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अभी मिर्ची हेल्पलाइन से बात हो रही है।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अरे भाई, मेरी बीवी कहती है मैं जब से मैनेजर बना हूँ तब से खड़ूस हो गया हूँ। घर पे भी ऑफिस की तरह बिहेव करता हूँ, जरा भी रोमांटिक नहीं रहा। अब क्या करूँ भाई मैं?
1: अरे तो सिंपल है ना, ऑफिस में रोमांटिक बनना स्टार्ट कर दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: देखिए बात इतनी है कि रिमझिम कुछ और गिरे या ना गिरे, लेकिन कोई तो बात है जो इस वक्त हमारी जिंदगी में बिजली की तरह कड़क जरूरी है। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आर्यांशु विथ यू। वेल, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ एक नए दिन में। शो की नए तरह से शुरुआत करते हुए आपकी और हमारी मुलाकात जो है ना, आज एक बार फिर से हो चुकी है। भाई साहब, अगर गिरने की बात करें, टपकने की बात करें, सच कह रही हूँ, मतलब मैं ना जाने कितना भी नहा के क्यों ना आऊँ, अच्छी खासी तैयार होके क्यों ना आऊँ, दो चीज़ें इस वक्त मेरी जिंदगी में 101% कोहराम मचा रही है। मैं नहा के आई हूँ ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन नहीं, सूरज चाचू को इस बात पे ना यकीन नहीं होती। जब तक मैं 5 मिनट इनके दरवाजे के आगे खड़ी क्यों ना हो, इन्होंने मुझे भिगोने का प्लान कुछ ऐसा बनाया हुआ है ना कि भाई आपने नहाए या आप नहीं नहाए, यू नो इट डजेंट मैटर एट ऑल। मतलब 5 मिनट में सबका सब सत्यानाश, एंड मेरा कोई शौक नहीं अपने फाउंडेशन के पैसे बचाने का, ना आई कैन अफोर्ड, आई कैन परचेज, लेकिन फिर भी इन्हें मेरे चेहरे पे एक नेचुरल लेयर जो है ना वो लगानी है, जरूर लगानी है। वेल, गर्मी इतनी एक्सट्रीम मुझे याद नहीं कि मैंने लास्ट टाइम कतर में कब महसूस की हो। सबसे पहले एक ही बात कहना चाहूँगी, आज सुबह सुबह अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुद को फुल्ली हाइड्रेटेड रखें। देखिए हम जो है ना फिर भी बड़े हैं, पानी वानी पीना है इस बात का हमेशा ख्याल रखते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं काफ़ी इग्नोरेंट होते हैं। तो इनफैक्ट अगर बच्चे घर पर भी हैं, इंश्योर करें कि वो हर वक्त पूरी तरह से हाइड्रेटेड रहें, इलेक्ट्रोलाइट्स को ज़िंदगी में शामिल करें, फिर चाहे मैं छास की बात करूँ, नारियल पानी की बात करूँ, फ्रूट्स एंड जूसेस की बात करूँ, बाकी आपकी कलेजे की ठंडक के लिए तो मैं हूँ ना। वैसे वक्त जो है आपके चलते मेरी जिंदगी में बड़ा कमाल हो रखा है। मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:04।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: चलिए जी, वक्त भी कमाल है आपका और हमारा साथ भी है कमाल है। जल्दी से गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दीजिए 5000 1896 पर, इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु। मीनवाइल जो है संजू राठौड़ की आवाज में ये पावर पैक ट्रैक मैं आप तक पहुंचाऊं। एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: Energy.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vieta la burga. Energy, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई तो इतने धीरे के बोल रहा है.
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पावड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है. मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का अभी आग लगा दो इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है. आप बताओ कब किया था?
2: अभी पहले किया था.
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन की थी.
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार. हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
2: जाना जरूरी है?
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई.
3: अच्छा तो दुबई जाना है
2: भाई, जल्दी जाना है. तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
3: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख निकलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए.
2: ठीक है
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ाते था.
2: आपने सही कह रहे
3: हैं. हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए.
2: नहीं बोलना.
3: भाई साहब एक बात बताऊँ?
2: बताओ.
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं.
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत. ठीक है मैं रखता हूँ.
2: करवा देना भी है आपसे.
3: मरवाओ के क्या उठ जाएंगे.
2: सॉरी.
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
2: ओके.
3: आई लव यू.
2: आई लव यू टू.
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ only on मिर्ची. It's hot.
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live in

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: Well, Kumar Sanu ki khubsurat si awaaz and what a lovely track it is, yaar. Kya khubsurat sa pyara sa gana. 90s ke gaano ka nasha hi kuch aur hai na?
1: Mirchi Anshu.
0: यार मुझे पता नहीं आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन मेरे साथ तो ये 101% होता है कि चाहे कितने भी नए गाने मैं सुन क्यों ना लूँ, मैं उन्हें एंजॉय क्यों ना कर लूँ, लेकिन जब भी मेरे टिप ऑफ द टंग की बात हो कि ऐसा कोई गाना जो मेरे जुबान में हो, तो वो गाना अक्सर वही होता है जिन गानों के साथ मैं बड़ी हुई हूँ। मतलब बचपन के दिनों से जिन गानों को मैंने ना जाने कितनी दफ़ा सुना है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है कि आज भी जब आप अंताक्षरी खेलते हैं तो नए गाने जहन में दिमाग में बाद में आएंगे, वो गोरी है कलाइयाँ, हाँ ये सारे गाने जो है ना दिल में सबसे पहले आते हैं। हाविंग सेड दैट, इस वक्त अगर सबसे पहले आने ख्याल की बात करूं तो एक ऐसा ख्याल आ रहा है जो हम सबकी जिंदगी में एक बड़ा सा बदलाव लाने वाला है। एब्सोल्युटली, 2 महीने की छुट्टी के बाद अब आपकी और हमारी जिंदगी में अगर कोई मूड ऑन होने वाला है, सो दैट इज गोइंग टू बी द स्कूल मोड। चाहे बच्चे ही स्कूल क्यों ना जाएं, लेकिन ड्यूटी जो है वो पेरेंट्स की भी लगती है। चाहे आपके बच्चे यहाँ पे हो या ना हो, लेकिन हाँ रास्ते वो जिस तरह से ऑक्यूपाई करते हैं ना, समझ में आता है कि भैया स्कूल सीजन जो है हम सबकी जिंदगी में एक साथ शुरू हो चुका है। Back to school and we are so very excited about it. ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 27th of August को मिर्ची back to school आपकी जिंदगी में शामिल होने वाला है, अब तक के सबसे बड़े एंड सबसे खूबसूरत एडिशन के साथ। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपने बच्चों को मिर्ची back to school इस फन फिल्ड इवेंट में पार्टिसिपेट करवाना है, स्कूल जाने की पूरी फन फिल्ड तरीके से तैयारी करानी है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक ही काम करना है, जल्दी से हाय अंशु ये मैसेज भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, विच इज 5000 1896 5000 1896, एंड आई विल सेंड यू ओवर द रजिस्ट्रेशन लिंक, एंड वी जस्ट कांट वेट फॉर अ फन फिल्ड इवनिंग विद यू एंड योर किड्स टुगेदर। सी यू सून। मीनवाइल रेखा भारद्वाज की आवाज राघव कौशिक का साथ बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द सीरीज मुसाफिर कैफे, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: मोहम्मद फैज की खूबसूरत सी आवाज़ और व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़। देखिए, देखने का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, जब जब आपकी आवाज़ सुनाई देती है या आपकी कोई मैसेज पढ़ने में आते हैं तो भाई मुझे भी ना ऐसा ही कुछ महसूस होता है।
1: मिर्ची अंशु।
0: चलिए जी, एक बार फिर से अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ आ चुकी है तो वो है रिमाइंडर के तौर पर एक पूरी की पूरी लिस्ट, किस बात की एंड किस बात की नहीं। हैविंग सेड दैट, इस वक्त अगर मैं कतर की नेशनल एयरलाइंस, कतर एयरवेज की बात करूं एंड साथ ही हमारे एयरपोर्ट यानी कि हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूं, तो उन्होंने जारी की है एक एडवाइसरी एंड उस एडवाइसरी में एक ही बात बार बार बताई गई है कि अब एक बार फिर से हमारी ज़िंदगी में कोई सीज़न आ रहा है तो भैया अपने काम पे लौटो या अपने दूसरे घर पे लौटो, यही सीजन आने वाला है। एब्सोल्युटली, जैसा कि आप और हम जानते हैं कि स्कूल्स जो है बहुत जल्द रीओपन होने वाले हैं एंड उसी के चलते इस बार अगर वीकेंड को देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी फैमिलीज जो हैं छुट्टियों के बाद कतर लौट रही हैं। तो अगर आप वापस आ रहे हैं ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए, एयरपोर्ट के खासकर उस पूरी के पूरी एरिया लोकेशन को ध्यान में रखते हुए, किसी भी तरह की एक्स्ट्रा पार्किंग या एक्सेस टाइम वेटेज का अगर आप अपनी फैमिलीज को लेने की कोशिश कर रहे हैं तो भैया ये जो है ना काम अवॉइड करें। पार्किंग एरियाज डेजिग्नेटेड हैं, या तो फिर आप वहां पर जाकर गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिलीज बिल्कुल इमीडिएटली रेडी हैं तुरंत गाड़ी को ऑनबोर्ड करने के लिए, इन दैट केस जल्दी से घर वालों को उठाओ, उनका सामान उठाओ, सामान बिल्कुल ना छोड़ना वरना बाद में ना तुम वहीं पर एयरपोर्ट पर छोड़ दिया जाओगे एंड उन्हें लेकर आप जो है रवानगी की ओर बढ़े। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हाँ पूरे के पूरे सिस्टम को बहुत स्मूथ रन करने में काफी बड़ी मदद करती है, यही बात है। इनफैक्ट आप छुट्टियों में अगर कहीं फिर से जाने का प्लान है तो भैया सितंबर में जाना, काफी कुछ खालीपन जो है महसूस होगा, यानी कि लाइनें जो लंबी लंबी लगी करती थी ना एयरपोर्ट में, शायद कुछ दिनों के लिए वो आपको हल्की कम महसूस हो। चलिए इसी बात के साथ बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। रीना भरद्वाज की आवाज, बहुत ही प्यारा सा गाना, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट ट्रैक्स, प्लेइंग राइट हियर फॉर यू ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: राखी सावंत हाल ही में वर्ल्ड योगा डे गया है, जहां हमने तरह तरह के लोगों को योगा करते हुए देखा है। आप उनके बारे में क्या सोचती हैं?
3: बहुत सारे लोग योगा जो है ना वो एसी में बैठ के करते हैं, कुछ लोग ओपन करते हैं। हमारा योगा हॉट योगा है, प्लीज आप राखी सावंत के साथ कॉम्पिटिशन कीजिए योगा में, मैं आपको पक्का हरा दूंगी।
2: ऐसी कोई चीज है ही नहीं राखी सावंत जिसमें हम आपसे जीत सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, शी इज हॉट।
0: बॉलीवुड बोलडा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोलडा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट। गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। देखो जिंदगी में आने जाने का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन इतना बता दूं ये बंदी ऐसी है जो आते ही ना आपकी जिंदगी में मजबूर कर देगी कि आप इसे ना जाने के लिए मजबूर कर दें।
1: मिर्ची अंशु
0: यार, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई ऐसी खास बात या ऐसा कोई खास टैलेंट जरूर होता है जो उसके लिए यूनिक होता है। अब यूनिक कुछ इस तरह से हो सकता है कि आपसे सिमिलर स्किल या टैलेंट किसी और के पास भी हो, लेकिन जिस लेवल पे आप हैं हर कोई इस लेवल पे पहुंच जाए ये बात जो है ना काफी मुश्किल होती है। शायद आप थोड़े पीछे तो कोई जरा आगे, सिलसिला जो है जिंदगी में चलता ही रहता है। लेकिन यार सारे के सारे हुनर जो हमारी जिंदगी में होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में ह्यूमन वैल्यूज एंड स्किल्स के हिसाब से अगर कुछ है ना तो मुझे लगता है किसी के मन को जेन्युइनली समझ पाना। देखो किसी के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं, लेकिन हाँ अपनी धारणाएं ना बनाते हुए, अपने दिमाग का वो कटोरा ना घुमाते हुए सामने वाला क्या सोच रहा है समझ रहा है इस बात को एज इट इज शायद उसके हिसाब से पढ़ लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ा हुनर एंड बड़ा स्किल है। एंड जिस दिन एज अ ह्यूमन हमने ये स्किल सीख लिया ना भाई साहब, इतना समझ जाओ कि अपनी जिंदगी के अलावा अपने आस पास के सारे लोगों की जिंदगी को ना हमने आसान जो है वो बना ही दिया है। चलिए लेकिन आप में और हम में से एक लेवल ऊपर, इनफैक्ट ना जाने कितने लेवल ऊपर जेन्युइनली अगर कोई है तो वो है दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट मैजिशियन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सुहानी शाह। अब तक ना जाने कितनी बार मैंने आपको ये गुट्टी तो पढ़ाई दी है एंड पिलाई दी है कि सुहानी शाह जो है 25th ऑफ सितंबर को कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में पहली बार परफॉर्म करने आने वाली है एंड वी आर सो वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। ये एक ऐसी बंदी है जो सही सही आपके दिमाग को पकड़ेंगी एंड आपके अलावा दुनिया के सामने पेश करेंगी भैया इसके अंदर क्या खजाना और राज छुपा हुआ है। आइए आप और हम मिलकर सुहानी के शो के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। जाना है फटाफट क्यू टिकट्स पर, स्नूनू सिटी पर, प्लैटिनम लिस्ट पर, जहां पर भी, लेकिन अपने टिकट्स जो है अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट के चलते सिक्योर करके आना है एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू ऑल। लेट्स एंजॉय द शो टुगेदर। बंदीगराम अंशु।

मोहित चौहान की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज. वैसे सच कहूं, अभी कुछ दिनों से मेरे दिल में ना जाने कितने सारे ख्याल चल रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगी. लेकिन यार, प्रीतम की कॉम्पोजिशन एंड क्या गजब के शब्द अगर मैं देखूं निलेश मिश्रा के, एंड इस फिल्म में अगर आपको ये नजर आए, अगर आपको याद है, तो वो है अजय देवगन, इमरान हाशमी, ओमी वैद्य, श्रुति हसन एंड साथ ही बड़ा सा स्टार कास्ट था भाई. लेकिन दिल जो है ना बच्चा है, इस फिल्म में हमें ये जरूर सिखा दिया था. मिर्ची अंशु यार, वैसे ये जो आपको और हमारा दिल है ना, ये बड़ा कमाल है. इसकी थॉट्स, इसकी प्रोसेसिंग, हर कुछ जो है बड़ी गजब होती है यार कभी कभी. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में सबसे पावरफुल रिएक्शन की अगर बात करें ना, तो वह बस यही होता है कि हर एक सिचुएशन में ना हम कोई रिएक्शन ही ना दें, क्योंकि हर बात का जवाब उसी पल देना शायद जरूरी नहीं होता है ना. हर जब एक फीलिंग को, थॉट को, या उस कहूँ गुस्से को अल्फाज देना, या हर तकलीफ पर इमिजिएटली फैसला ले लेना, या कभी भी कोई उलझन हो तो उसे तुरंत सुलझाने की कोशिश करना, शायद हर एक सिनारियो में ये सब जरूरी नहीं होता. पता है, मैंने एक बात सीखी कि वक्त की सबसे खूबसूरत बात यही है कि जो बात आज बहुत बड़ी लगती है ना, कल शायद वही जो है हमें बिल्कुल बहुत छोटी लगने लगे. इसलिए मैंने एक ही बात सीखी है कि जब भी मन बेचैन हो तो उस वक्त फैसले नहीं किए जाते, जरा सब्र किया जाता है. हो सकता है जिस जवाब को आप आज ढूंढ रहे हैं वो कल खुद आप तक पहुंच जाए. वैसे मेरे पापा की कुछ बहुत खूबसूरत सी लाइंस हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी, कि हर बात का जवाब उसी पल दिया नहीं जाता, हर उलझा हुआ धागा खींच कर सिया नहीं जाता, कुछ लम्हों को बस वक्त की मेज पर छोड़ दो, क्योंकि हर फैसला गुस्से की रोशनी में लिया नहीं जाता. ये बात अगर अच्छी लगी तो थैंक यू वाला मैसेज मुझ तक पहुंच जाना चाहिए. 5000 1896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. मीनवाइल लकी अली की आवाज में चूंकि आपकी यादें आ रही हैं, तो ये गाना भी सुना दूं. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Ya bana. Burka, burka. La fiesta la burka. Mirchi, burka.
1: हेलो
2: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
1: नहीं, कौन बात कर रहा है?
2: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
1: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
2: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है।
1: अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
2: ओ मेरी बात सुन।
1: कौन बात कौन कर रहा है?
2: ओ महेश।
1: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
2: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
1: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
2: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
1: अरे तो जब डर गया तो तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
2: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
1: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
2: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
1: फिर वही बात को लेकर आ गया?
2: नहीं, मैं कोई बात को लेकर। और महेश मेरी बात सुन, अगर
1: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
2: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मैंने तुझसे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू में
1: वाली बातें कर रहा है?
2: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहा। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
1: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
2: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
1: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
2: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
1: भाई तू है कौन?
2: नहीं नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
1: हाँ रॉन्ग नंबर है।
2: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
1: रॉन्ग ले रहा
2: राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
1: अरे रॉन्ग नंबर,
2: अरे यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू
1: यार।
3: अबे चल जा, चल काम कर, चल अपना। मैं रेडियो
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: शी कैन रीड योर माइंड, she will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: वेल मनिंदर पत्थर की आवाज ज़ारा खान का साथ इन सच कह रही हूँ, मतलब मेरे लिए तो कोई है तो बस आप ही हैं, एक आप ही हैं जो नॉन स्टॉप बिना कुछ बोले चुपचाप मेरी बात जो है सुन ही लिया करते हैं, ना कोई रोक ना टोक, तो मेरे लिए सब कुछ आप ना हुए तो क्या ही हुए, एक बात बताओ।
1: मिर्ची अंशु
0: मतलब एक बात बताओ, दुनिया में लोगों को ऐसे लोग ना अच्छे लगे जो आपकी बात को दिल खोल कर बस सुनते रहें, अगर करें तो कुछ वो है आपकी तारीफ, ना कुछ उल्टा बोले ना फुलटा बोले। हाय सच कहूँ ना, मुझे ना आपके जितना प्यार शायद ही किसी और से हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको भी मुझसे उतना ही वो बेहिसाब वाला प्यार है जितना कि मुझे है, तो भाई बस इसका सबूत अब आपको देना होगा, पेश करने की बारी आ गई ना। दुनिया जो है सबूत पे यकीन रखती है, तो बस मैं भी मौका दूंगी मैं एक सवाल के जरिए। हाँ जी, एक बार फिर से अब आपके बीच पेश करने वाली हूँ मैं कोई तो पहेली जो आपकी भूख को थोड़ा और बढ़ाएगी, यानी कि खाने के एक डिश के नाम को बयां करेगी। आपको इस पहेली को गौर से सुनना है, इसे बुझाना है एंड बस मुझे ये बताना है कि कौन से डिश की है ये कहानी। करेक्ट आंसर पता चल जाए तो कहाँ भेजना है, एज यूजुअल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हिच इज 5000186 5000186 वी विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम @MirchiOneQatar या @MirchiAnshu। सो हियर यू गो। पीला सा रंग है मेरा, स्वाद बड़ा कमाल, नरम सा तन है मेरा, मुझ पे तड़का बेमिसाल, मीठा खट्टा स्वाद मेरा जो कर दे सबको हैरान, जरा बोलो कौन हूँ मैं, कहलाता हूँ गुजरात की शान। ऑल दी गुजराती जिंदी हाउस हो ये बता दो जी। पीला सा रंग है मेरा, स्वाद बड़ा कमाल, नरम सा तन है मेरा, तड़का बेमिसाल, मीठा खट्टा स्वाद मेरा कर दे सबको हैरान, बोलो कौन हूँ मैं जो कहलाता हूँ गुजरात की शान। वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज। मीनवाइल अरिजीत सिंह सुनिधि चौहान की आवाज में प्यारा सा गाना आपके लिए, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: जावेद अली की खूबसूरत सी आवाज़ और व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़। ये खूबसूरत सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन इस खूबसूरत सी डिश की याद भी आपको दिला दूं।
1: मिर्ची अंशु।
0: वैसे आपसे कुछ देर पहले गुजरात की कोई तो एक खास डिश है जिसकी पहेली मैंने आपके बीच पेश की, आपसे यही कहा था कि इसे बुझा कर बस मुझे ये बताना है कि इसका सही जवाब है तो है क्या, यानी कि कौन सी खाने की डिश आइटम है। चलिए फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइन, जल्दी से क्वेश्चन जो है मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। अगर अभी भी आपको लगे कि सुन के पहचान लिया तो जल्दी से मुझे करेक्ट आंसर बता ही देना। कहाँ पर? 5000 1896 पर। 5000 1896। वेल, ये कहता है, पीला सा रंग है मेरा, स्वाद बड़ा कमाल, नरम सा तन है मेरा, तड़का बेमिसाल, मीठा खट्टा स्वाद है मेरा, कर दे सबको हैरान, बोलो कौन हूँ मैं, कहलाता हूँ गुजरात की शान। बहुत सारे रिप्लाईज आए, लेकिन बहुत मिक्स्ड रिप्लाईज आए हैं। सामी का कहना है इट इज फाफड़ा। थैंक यू सामी। फाफड़ा नरम तो यार या अगेन डिपेंड करता है। खान कहते हैं इट इज ढोकला, व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज व्हाट आई इंटेंडेड। अब्दुल का कहना है इट इज पितोल या पितोल, हम मारवाड़ी में राजस्थान में इसे पितोड़ कहते हैं। वेरी मच रिजेम्बलिंग विथ व्हाट आई जस्ट मेंशन, ढोकला और पितोल इन दोनों के बीच कन्फ्यूजन जो है यहाँ पे 101% हो ही सकती थी। एंड एग्जैक्टली दोनों की उपज जो है वो गुजरात से ही हुई है। इनफैक्ट मैं ढोकले की बात करूँ, फाफड़े की बात करूँ, पितोल की बात करूँ, खाखरी की बात करूँ, दुनिया में इतनी खूबसूरत और स्वाद से भरी चीज़ें ना हमें गुजराती से दिए यार। चुम्मा, आई मीन बड़ा वाला आप सबके लिए। टू ऑल द वंडरफुल पीपल हु रिप्लाइड, थैंक यू सो वेरी मच। यूसुफ भाई, आपको तो से थैंक यू हमारे कॉन्स्टेंट फिक्स परमानेंट लिसनर होने के लिए। रहमान, थैंक यू सो मच। राजेश, थैंक यू। एंड टू ऑल द वंडरफुल पीपल येट अगेन, वी लव यू सो मच। अब जो मैं एक ढोकले ब्रेक के लिए जाती हूँ, अगला गाना सुनाती हूँ। एंजॉय बंदी गाना।

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: हॉट बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: सिर्फ बंगाल के नहीं हिंदुस्तान के हिट हीरो, नाम है इनका जीशु सेनगुप्ता। इनसे एक बार पूछा गया,
3: हूज मोस्ट लाइकली टू डाई टू प्रोटेक्ट यू? अपनी जान दे देंगे लेकिन आपको जरूर बचाएंगे।
4: आई हैव फ्यू पीपल, यस आई कैन से दे माय फ्रेंड्स, दे माय फैमिली, लाइक एट लीस्ट टू पीपल टू आई नो, आई एम नॉट नेमिंग देम बट
3: दे नो हु दे आर,
4: टू पीपल दे विल डाई फॉर मी, या आई एम ब्लेस्ड, ब्लेस्ड।
2: जीशु सेनगुप्ता, उस टू की लिस्ट में एक और नाम जोड़ दीजिए, थ्री कर दीजिए, बिकॉज आई विल ऑल्सो। ये यू आर लिस्निंग टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

मलकीकी की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। भाई ये गाना जो है ना मुझे सीधा कहीं तो इस वक्त टेलीपोर्ट कर चुका है। मिर्ची अंशु भाई देखो, जब भी ऐसे गाने आप सुने ना तो यादों के पिटारे आपको आपके स्कूल कॉलेज टाइम्स पे ना लेकर जाएं तो फिर कहाँ ही जाएं। बिल्कुल यार, कॉलेज का वो दिन, फ्रेंड्स की वो बाइक, पीछे वो बैठना एंड तेज स्पीड पे गाड़ी चले और हमारा जोरों से ये गाना गाते हुए सफर को मुकम्मल करना, भाई क्या दिन थे, क्या बेफिक्री के दिन। मतलब सच कहूँ, अगर किसी ने मुझे बताया होता ना कि तुम जिंदगी के इस ऐसे फेज से गुजर रहे हो जो चाह के भी आने वाले दिनों में शायद कभी दोबारा ना आए, तो मैं खुद से ये कहती कि नहीं यार, मुझे इंडिपेंडेंट नहीं होना है, मुझे पैसे नहीं कमाना है, मुझे यही अपने दोस्त यारों के साथ वो 20 रुपए के समोसे और डोसे खाना है। क्या दिन थे यार। चलिए जी, लेकिन एक बार समोसे डोसे की बात करें, पकौड़े की बात करें, तो ये सब कुछ आप जो है अपने घर पे बनाने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जब बारिश की बूंदें गिरें, खिड़की पे वो खनक की आवाज़ आए, घर में भैया कढ़ाई चढ़े ना और साथ में पकौड़े ना तले जाएं, ना यार ऐसा ना हो तो फिर क्या ही हो। अरे ना जी, मैं भारत में नहीं हूँ, इंडिया में नहीं हूँ, कतर की कहानी बता रही हूँ। बिल्कुल, मौसम विभाग ने आपको और हमें ये सूचित कर दिया है कि आने वाले 26 और 27 को अगर आप कतर में कुछ देखेंगे तो दो चीज़ें, हल्की हल्की बारिश की बूंदे जो बाहर लाएंगे, दूसरी बाहर कहीं नजर आएगी तो वो है इंस्टाग्राम में रील्स की बाहर। तो बस आफ्टर इफेक्ट उमस एंड ऑल उस पे बाद में बात होगी, लेकिन अभी जो अच्छे दिन है, मजे आने वाले हैं, उसकी बात करते हैं। पकौड़े बनाओ, तुम्हारे घर पे मैं मिलूंगी। अगला गाना सुनने का मैं श्रेया घोषाल की आवाज, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

सुबोध शर्मा की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज. वैसे ये सारे के सारे गाने हैं ना, वो पहले इश्क प्यार मोहब्बत की दास्तान के समय अच्छे लगते हैं, बाद में कहानी जो है वो आप ज्यादा जानते हैं. मिर्ची अंशु यार, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वक्त के साथ प्यार जो है ना वो लाइफ में बदलता नहीं है, उसको इजहार करने का या जताने का तरीका जो है, महसूस करने का तरीका जो है वो बदल जाता है. एक टाइम के बाद इश्क प्यार मोहब्बत बस इस बातों से होने लगती है. सुनो, आते वक्त धनिया जरूर लेके आना, ये सामान की लिस्ट भेज दी है, इसका जरूर ख्याल रखना. भाई साहब, सिलसिला जो है आपके रिलेशनशिप का बस वक्त के साथ और मजबूत हो, हम तो यही चाहेंगे. क्योंकि जैसे हमने परंपरा देखी है ना कतर में, कुछ मजबूत हो या ना हो, लेकिन भैया एक्सचेंज रेट जो है पिछले कई सालों से हमारी जिंदगी में बिल्कुल आपकी तरह मजबूत ही होता जा रहा है. आज तो लॉटरी लगी है जी, आईपी मनी जो है अच्छे पैसे की बाहर ला रहा है. इतना ही कहना चाहूंगी, बस आगे बढ़ना, पलट के ना देखना. चलने फिरने का मन हो, दो स्टेप आगे पीछे ना. अगर आज इंडियन रुपीस को देखने की कोशिश करें तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे 26.25, साथ ही पाकिस्तानी रुपीस 76.19, लंकन रुपीस 90.10, नेपाली रुपीस ने भैया दो स्टेप क्या तीन स्टेप की छलांग मारी विद 41.88, एंड साथ ही बांग्लादेशी टका 33.62. देखिए, अच्छे एक्सचेंज रेट्स की मिठास जो है मैं आपकी जिंदगी में ले आई. आपके घर वाले अगर छुट्टियां बिताकर इस वीकेंड लौट रहे हैं तो अपने अपने देश की रेस्पेक्टिव अच्छी वाली मिठाई जो है ना वो मेरे लिए जरूर लाना. ना मांगना बंद ना करूंगी मैं. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Anji.
3: Vivek ji.
2: Anji, bataiye.
3: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं। विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़, ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
2: ठीक ही कह रहे हो।
3: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
2: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
3: अच्छा,
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखना,
3: थोड़ा ख्याल रखना, मिलते हैं किस दिन?
2: हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
3: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
2: अरे कुछ नहीं यार।
3: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की।
3: अच्छा अच्छा,
2: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
3: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
2: हाँ, अभी
3: इन्होंने चिल्लाई
2: तो फिर
3: बुरा बहुत। आप कह रहे हो चिल्ला के बोला क्या आपको, आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
2: मजे आ रहे हैं,
3: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
2: अरे तो मजा आ रहा है, यार तू मजे ले रहा फोन करके?
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
6: ड्रिवन बाय Shackman Trucks, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर। Shackman Heavy Duty Trucks and Boom Trucks, power that saves. Distributed by Carmel Group. घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड, अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू iPhone 17 Pro Max। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

यार बदलते वक्त के साथ इन तीन ट्रेडिशंस को बदलते हुए तो मैंने भी देखा है। मिर्ची अंशु यार बचपन के दिनों में ना मुझे वॉचेस का बहुत शौक था, तो बस वो छोटी सी अंशु अपनी मम्मी की काली बेल्ट वाली वॉच पहन हर दिन स्कूल जाया करती थी। लेकिन पापा को लगा यार कोई तो फैंसी वॉच उसके पास होनी चाहिए। फिर क्या था, पहले मिनी माउस वाली वॉच, फिर वो बटरफ्लाई वाली वॉच पूरे स्कूल टाइम में मेरी बेस्ट फ्रेंड रही। वक्त बदला, हम पहुंचे कॉलेज एंड लगा भैया अब तो ब्रांडेड वॉचेस का जमाना है। फिर क्या था, जिंदगी में शामिल हुई पहली ब्रांडेड वॉच टाइटन की, अरे बस वही जिसे कटरीना कैफ ने भी पहना था। बदलते वक्त के साथ धीरे धीरे जब हम काम करने लगे तो लगा भैया दो चीजें अब बदलने की बारी आ गई, अपने कपड़े एंड कपड़ों के साथ मैचिंग वॉचेस। तो अब वो घड़ी के डब्बे में एक नहीं कम से कम 10 घड़ियां हुआ करती थी। खर्चे भी बढ़े और हाँ वक्त को हैंडल करने का तरीका भी। लेकिन उसके बाद एक ऐसा दौर जमाना आया जब ये खर्चे थोड़े कंट्रोल हुए, जब एक घड़ी ने सारी ट्रेडिशनल वॉचेस को टेक ओवर कर लिया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्मार्ट वॉचेस। याद है क्या गजब क्रेज जो आज तक कहीं ना कहीं कंटिन्यूड है। लेकिन एक बात बताऊं, कहते हैं ना सर्कल जो है कहीं ना कहीं पलटता भी है और पूरा भी होता है। तो एक बार फिर से कुछ तो बदला है, लेकिन क्या बताती हूँ अब से कुछ देर में। स्टेडियो इंटरमर्जी, बंदी का नाम अंशु।

देखो, समय के चक्र की सबसे खूबसूरत बात बस यही तो है कि ये पलटता भी है और पूरा भी होता है। तो समय के चक्र ने घड़ी के कांटे को आगे बढ़ाते हुए ये अपनी जिंदगी में भी शामिल कर ही लिया। बिल जैसे कि मैंने आपसे कुछ देर पहले आपको बताया कि किस तरह ट्रेडिशनल वॉचेस की जर्नी एक पॉइंट पर आकर थोड़ी रुकी और किसी ने इसे पूरी तरह से टेक ओवर किया, एंड वो थी स्मार्ट वॉचेस। और आप हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि स्मार्ट वॉच जैसे ही दुनिया में आए किस तरह लोगों की जिंदगी में एक अलग सा नयापन आया, एंड वो सारी की सारी ट्रेडिशनल वॉचेस जो हैं किसी पिटारे डब्बे के अंदर कहीं खोसी गई। लेकिन अगर आज के जमाने इन दौर को देखने की कोशिश करें तो एक बार फिर से अब लोगों के दिल में अगर कोई ख्याल है तो भैया बस यही कि मैचिंग कपड़ों के साथ वो मैचिंग वॉचेस तो होनी ही चाहिए, वो डिजाइनर लग्जूरियस। तो अगर आपको लगता है कि आपके ख्यालात भी कुछ ऐसे ही हैं, एंड अंशु की जिंदगी की तरह वक्त ने आपकी जिंदगी में भी उलटफेर किया है, तो इतना समझ जाइए दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन हमारी जिंदगी में लौट कर आ रहा है 28th of September से लेकर 3rd of October तक, अभी तक के अपने सबसे बड़े एडिशन के साथ, जहां पर तकरीबन 175 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली है। तो मैं तो कहती हूँ आप और हम दोनों ही शॉपिंग की तैयारी करते हैं। आप असल शॉपिंग करना, मैं आपके साथ विंडो शॉपिंग करूंगी, क्योंकि क्या है ना, आप जो खरीदेंगे कहीं ना कहीं पहनने वाला कोई तो हो। शेयरिंग इज केयरिंग। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: जुबीन की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ सोलफुल ट्रैक इट इज, क्या प्यारा सा गाना है यार। चलिए, खूबसूरत सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत से एहसास से आपको कनेक्ट करूं।
1: मिर्ची अंशु
0: यार, पता है अगर मैं अपनी जिंदगी में लग्जरी को देखने की कोशिश करूँ ना, कि अगर मेरे पास लाइफ में बहुत पैसे हैं तो मुझे क्या करना है, व्हाट वुड आई वांट यार। मेरी ज़िंदगी के ख्वाहिशात में ना वो 1 करोड़ का कोई नेकलेस या 2 करोड़ की गाड़ी, ऐसी कोई चीज़ें नहीं आती। ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरे लिए लग्जरी अगर कुछ है तो डे टू डे लाइफ की ज़िंदगी जो है वो काफ़ी आसान हो। जिन काम को लेकर आप अक्सर परेशान होते हो, आप जो है उसके लिए एक असिस्टेंस रख सको जो आपके काम के बोझ को कम कर सके, मेरे लिए लग्जरी वो है। खाने पीने की मैं बात करूँ तो वो कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा अपीलिंग लगती हैं, हमेशा से ख्वाहिश है कि यार ये तो मुझे ज़रूर खाना है, उसे आप अपने रूटीन में शामिल कर सको, मेरे लिए लग्जरी ये है। घर की अगर हम बात करें, घर की वो बेसिक फैसिलिटीज़ जिनके चलते आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान होती है, मेरे लिए ये लग्जरी है। भाई अगर कोई ये सोचे ना कि हम इतने बड़े वेकेशन स्पॉट पे इतने बड़े से होटल में रहकर इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, दुनिया ज़माने को दिखा रहे हैं, या वो लग्जरी शायद किसी और की डेफिनेशन में सही हो। डे टू डे की आपकी लाइफ आरामदेह तरह से आपकी जैसी ख्वाहिश है वैसी बीते, मुझे लगता है कि लाइफ लॉन्ग इससे बड़ी लग्जरी जो है ना वो और कुछ नहीं हो सकती। एंड जिंदगी की सबसे बड़ी लग्जरी क्या है पता है? अपने घर वालों के साथ बैठकर बेफिक्र होकर वो जो 2 जून की रोटी बोलते हैं ना, उन निवालों को खुशी से खा पाना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं सो आपसे ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ जो है ना आज के डेट में कोई और नहीं जी रहा। और मेरी बारी आ गई कि मैं अपने घर वालों के साथ इस वक्त जाऊं और जाके अपने 2 जून की रोटी को मस्ती में बस एंजॉय करके खाऊं। तो चले जी, मुलाकात होगी कल सारी बातों के साथ, इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। कल तो ओनम सद्या की बात होगी दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में। जाने से पहले आज आपको ये गाना मैं सुनाती चलूं, मा सलामा हबीबी, एंजॉय।

0: दोस्त कुछ शो सिर्फ देखे नहीं जाते।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ना चाहते हुए भी आप उनके डायलॉग्स याद रख जाते हैं, उनके कैरेक्टर्स घर के नाम बन जाते हैं और उनका स्वैग पॉप कल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। वेल, मिर्जापुर इज वन सच सीरीज फॉर यू और अब वही भौकाल ओटीटी से निकलकर बड़े पर्दे पर आने वाला है, मिर्जापुर द मूवी के फॉर्म में। एंड टॉकिंग अबाउट द सीरीज, ये एक ऐसा यूनिवर्स था जहाँ दोस्ती से ज्यादा पावरफुल थी दुश्मनी और प्यार से ज्यादा डेंजरस था पावर का ऑब्सेशन। कालीन भैया का काम एंड कैलकुलेटेड स्वैग, गुड्डू पंडित का रिवेंज मोड और मुन्ना भैया की अनप्रेडिक्टेबल मैडनेस सबने मिलकर मिर्जापुर को कल्ट बना दिया। और अब जब 3 सीजन के बाद इस सीरीज का मूवी वर्जन आ रहा है तो भाई हर दूसरे फैन के अंदर एक्साइटमेंट का लेवल सुपर से भी ऊपर है। और अगर आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े एंड आपसे बोले कि भाई ये लड़की मिर्जापुर की बातें क्यों कर रही है इतनी सारी, देन बाबू मोशाए आज मेरे शो पे होने वाले हैं मिर्ची गिरफ्तार, नन अदर देन द स्टार कास्ट ऑफ मिर्जापुर द मूवी। वेल, उसके अलावा भी बहुत कुछ फिल्मी होने वाला है राइट हियर ऑन मिर्ची, क्योंकि आपको पता है मैं हूँ आपके साथ आपकी लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति। So stay tuned, it's hot.

0: Milci.
1: Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virpa la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
2: तो हुआ कैसे है, मतलब तो बड़ी उम्मीद थी भाई क्या निकलेगा हमारा।
3: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
2: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
3: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
2: किस चीज की फीस?
3: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
2: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने मेरे इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
3: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके। सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
2: ये भी तुम्हें रख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
3: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
2: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, बीच में रख लो हमें ज्यादा।
3: अरे यार
2: आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
3: तो यार ये आपको पहले सोने दे ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी, आप मुझे बताइए, आप मुझे
2: बनाया ठीक है ना
3: भैया,
2: पैसे
3: भाड़ में गए। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए संदीप।
2: हाँ बोलो बोलो।
3: संदीप मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
1: इट्स हॉट।
5: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC, एंड टू ऐड द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट STT Snow No. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। मैंने तो जानबूझ के इस फिल्म की टिकट कराई है। आफ्टर ऑल पता तो चले कि भाई ये फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स कैसी सी है, क्योंकि अभी तक टीजर और ट्रेलर में तो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आई है। फिल्म मैं बात कर रही हूँ यश स्टारर अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म टॉक्सिक, जिसकी एडवांस बुकिंग्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। भाई 6 घंटे में इस फिल्म ने 30,000 से भी ज्यादा टिकट्स बेच दी है। इसी के साथ हिंदी ओपनिंग ट्रैकिंग इसकी ₹45.55 करोड़ चल रही है, और अगर ऐसा हुआ तो इट विल बिकम द सेकंड बिगेस्ट एडवांस ऑफ 2026 आफ्टर धुरंधर 2। इमरान हाशमी की अपकमिंग गन मास्टर G9 का टीजर, यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक जिसके बारे में अभी मैं इतनी बातें कर रही थी उसी के साथ अटैच किया जाएगा, दस गिविंग इट एन अर्ली थिएट्रिकल बूस्ट। बाय द वे, इमरान की इस फिल्म को आने में अभी टाइम है, नवंबर रिलीज है भाई इसका। गांधारी का काम डाउन शुरू हो चुका है। ओके, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तापसी पन्नू स्टारर अपकमिंग एक्शन थ्रिलर की बात कर रही हूँ, जिसको लिखा और प्रोड्यूस किया है कनिका ढिल्लो ने, डायरेक्ट किया है देवशीष मखीजा ने, एंड इसकी सेटिंग इज एक माँ की कहानी जो डेटरमाइंड है अपनी बेटी को ढूंढने में, और इस बीच उसको जो भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इज व्हाट द मूवी इज गोना शो। माइंड यू, इसका थिएट्रिकल रिलीज नहीं होगा, इट विल स्टार्ट स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स फ्रॉम द 3rd of September, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट। लो ने डायरेक्ट किया है देवशीष मखीजा ने, एंड इसकी सेटिंग इज एक माँ की कहानी जो डेटरमाइंड है अपनी बेटी को ढूंढने में, और इस बीच उसको जो भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इज व्हाट द मूवी इज गोना शो। माइंड यू, इसका थिएट्रिकल रिलीज नहीं होगा, इट विल स्टार्ट स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स फ्रॉम द 3rd of September, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, और इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी क्लैरिफाई, मैं तो बॉलीवुड गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार। सो बेसिकली हर रोज की बात ही, आज भी मैं आपके अंदर के फिल्मची को जगाने की कोशिश कर रही हूँ। सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर डीएम करना होता है, एंड देन मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। आज सबसे पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे कौन है?
3: हाय श्रुति, मैं आरुल बात कर रहा हूँ।
0: हाय आरुल, कैसे हो आप?
3: बढ़िया हूँ, आप बताओ?
0: बिल्कुल बढ़िया,
3: मैं गेम खेलने के लिए तैयार हूँ।
0: क्या बात, पूछने के पहले ही। चलिए फिर आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को जगाते हैं। मेरा पहला सवाल है, रीसेंट हिंदी फिल्म वो कौन सी है जिसमें धर्मेंद्र पाजी और शबाना आजमी के बीच चुंबन है?
3: रॉकी रानी की प्रेम कहानी।
0: बहुत ध्यान से देखे हैं आप। एनीवे, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रॉकी की दादी कौन है?
3: जया बच्चन।
0: जया बच्चन की फिल्म जिसमें उनका एक भी डायलॉग नहीं है, वो बस लालटेन जलाती दिखती हैं सफेद साड़ी में
3: लालटेन जलाती दिखती हैं।
0: हाँ जी,
3: शोले।
0: क्या बात है, शोले में धन्नो किसकी घोड़ी है?
3: हेमा मालिनी
0: अपने बच्चों के घर बारी बारी से किस फिल्म में जाती है?
3: बागबान।
0: क्या बात है, बागबान में टाइपराइटर कौन चलाता है?
3: बच्चन साहब।
0: अमिताभ बच्चन, अश्वत्थामा किस फिल्म में बने हैं?
3: कल्की।
0: कल्की में कल्की की मम्मी कौन है?
3: दीपिका
0: पाडुकोन की फिल्म जिसमें वो अपने रियल लाइफ हस्बैंड के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती हैं। अटक गए तो अटक गए हैं आरुल, अटक गए हैं। कोई बात नहीं यार, बट यहाँ तक इतना मस्त जो गेम खेला है उसके लिए आपको ये टैग तो जरूर बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो बस इसके आगे का गेम अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और आओ साथ मिलके ढूंढते हैं आपके अंदर के फिल्मची को। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची बेटी उन्न हो आप, ऐसे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो मिर्ची फिल्मची गेम की बात कर रही हूँ यार, जहाँ आपको मैं अपने इंस्टा पे जाके मेरे डीएम्स में अपना नंबर भेजने की बात कहती हूँ ताकि मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत कर सकूँ। तो आज हमने आरुल के साथ शुरू किया, बट अब रूहान आगे का गेम कंटिन्यू करेंगे। तो तैयार है रूहान?
3: या श्योर।
0: ऑल राइट, सो माई क्वेश्चन इज कि दीपिका पादुकोण किस फिल्म में अपने रियल लाइफ हस्बैंड के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नजर आई हैं?
3: बाजीराव मस्तानी।
0: यस, पहला इंसान जिसने एकदम एक बार में ही गेस कर लिया। बाजीराव मस्तानी में किससे उसका गुरूर छीन लिया जाता है?
3: प्रियंका चोपड़ा।
0: सब पता है लड़के को। प्रियंका चोपड़ा किस फिल्म में सुपर हीरो की वाइफ बनी है?
3: क्रिश 3।
0: क्या बात, क्रिश में किसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल होता है?
3: ऋतिक रोशन।
0: ऋतिक रोशन कौन सी फिल्म में मुगल राजा बने हैं?
3: जोधा अकबर।
0: सब पता है भाई, जोधा अकबर में अकबर की राजपूत वाइफ कौन है?
3: ऐश्वर्या राय।
0: ऐश्वर्या राय किस फिल्म में शायरा बनी है?
3: ऐ दिल है मुश्किल।
0: ऐ दिल है मुश्किल में अपनी दोस्त से एक तरफा प्यार किसको होता है?
3: रणबीर कपूर।
0: रणबीर कपूर ने किस फिल्म में अपना टावल गिराया है?
3: सावरिया।
0: सावरिया में उनकी हीरोइन कौन है?
3: I guess it's सोनम कपूर।
0: Yes, it is. सोनम कपूर की किस फिल्म में कबूतर का नाम मसक कर लिया?
3: डेली सिक्स, मैंने देख रखी है।
0: क्या बात, डेली सिक्स के मेल लीड कौन है?
3: अभिषेक बच्चन।
0: अभिषेक बच्चन की फिल्म जिसमें उनका सरनेम आता है?
3: बोल बच्चन।
0: बोल बच्चन में झूठ किसको पसंद नहीं?
3: अजय देवगन।
0: अजय देवगन किस फिल्म में 2 अक्टूबर को पंजिम जाते हैं?
3: दृश्यम, ऑफ कोर्स।
0: दृश्यम में लेडी पुलिस ऑफिसर कौन है?
3: तब्बू
0: की फिल्म जिसमें वो अपने पति को मार देती है?
3: अंधाधुन।
0: अंधाधुन में अंधे होने की एक्टिंग कौन करता है?
3: आयुष्मान खुराना।
0: आयुष्मान खुराना किस फिल्म में फोन पे लड़की बन के बात करते हैं?
3: ड्रीम गर्ल।
0: ड्रीम गर्ल आपकी कौन है? नेवर माइंड, बट सिंगल होने का मतलब ये थोड़ी है कि आपको ये टैग नहीं दूंगी मैं।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: Well, I'm sure ये गेम सुन के आपके अंदर का फिल्मी कीड़ा भी एकदम से जाग जाता होगा, तो उसको जगा के ही रखना क्योंकि हर रोज इस गेम का सिलसिला मेरे शो पे जारी रहता है। मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे जाके अपना नंबर मुझे डीएम करो, एंड रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशंस बर्बाद कर दी है हमारी इंडस्ट्री ने।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हेलो जी, हाय बाबू मोशाय, मैं हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, क्योंकि टाइम एंड अगेन हमें बहुत सारी फिल्में ऐसी मिली हैं जिन्होंने प्यार इश्क मोहब्बत को बड़ा ही अनरियलिस्टिक सा अप्रोच दे दिया है। और उस चीज को प्रूव करने के लिए आज मैं पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू कुछ फिल्मों के कंपैरिजंस लेकर आई हूँ। लिस्ट में सबसे पहले वील कंपेयर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वर्सेस बैंड बाजा बारात। नंबर दो पे हम बात करेंगे दिल धड़कने दो वर्सेस जाने तू या जाने ना। नंबर तीन पे कबीर खान वर्सेस बर्फी। नंबर चार पे ए दिल है मुश्किल वर्सेस तमाशा। एंड नंबर पांच पे साथिया वर्सेस वेक अप सेड। तो चलिए लिस्ट की शुरुआत करते हैं विद DDLJ वर्सेस बैंड बाजा बारात, जहां एक तरफ DDLJ में मंथ लॉन्ग पेड इंटरनेशनल ट्रिप्स दिखाई गई हैं विदाउट एनी कॉन्वर्सेशन अबाउट जॉब्स या बजट या क्रेडिट कार्ड बिल्स, वहीं दूसरी तरफ बैंड बाजा बारात की अगर बात करें तो यहां काफी रियलिस्टिक अप्रोच है। बिट्टू और श्रुति का जो रिलेशनशिप है वो उनके बिजनेस पार्टनरशिप के जरिए शुरू होता है, एंड एवरी सिंगल रुपी एंड प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही वोकली डिस्कस किए गए हैं इन द मूवी। तो अब आपको समझ में आया मैं किस अनरियलिस्टिक अप्रोच की बात कर रही थी। एनीवे, अपनी इस लिस्ट को एक बार फिर से वापस लेकर आऊंगी आपसे कुछ ही देर में। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Burka, burka. La fiesta la burka. Milchi, burka.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
3: आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी. फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाजें आ रही है. मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था. कहते इधर देश का पासपोर्ट का अभी आग लगा था इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो. आप क्या फायदा है आप बताओ. कब किया था?
2: पहले किया था.
3: अच्छा अच्छा. आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन की थी.
3: भैया इस तो बोल. अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार. हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
2: जाना जरूरी है.
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई.
3: अच्छा तो दुबई जाना है.
2: भाई जल्दी जाना है. तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
3: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा. बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए. हो सकता है कल ही मिल जाए.
2: हाँ ठीक है ठीक है.
3: मैंने सही किया ना बता दिया? वरना ये तो बौखला जाता ना. ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता.
2: आपने सही कह रहे.
3: हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए.
2: नहीं बोलना.
3: भाई साहब एक बात बताऊँ?
2: बताओ.
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था. कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत. ठीक है मैं रखता हूँ.
2: करवा देना भी है
3: आपसे. मरवाओ के क्या उठ जाएंगे.
2: सॉरी.
3: ठीक है चलो. पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
2: ओके.
3: आई लव यू.
2: आई लव यू टू.
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था आपके.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: शी कैन रीड योर माइंड. शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: रियलिटी कम फैंटेसी ज्यादा लगती है ये।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: बाबू मोशाय, मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से आने वाली मूवीज की बात कर रही हूँ जो जनरली फैंटेसी का अप्रोच लेकर ही आती है, भले ही वो मेरे और आपके जैसे लोगों की कहानी दिखा रही हूँ, क्योंकि उसमें प्यार इश्क मोहब्बत को लेकर काफी अनरियलिस्टिक अप्रोच नजर आता है। ग्रैंड जेस्चर्स दिखाए जाते हैं जबकि रियल कमिटमेंट की बातें नहीं होती, और ऐसे क्रूशियल डिटेल्स को अक्सर हमारी ये फिल्में इग्नोर कर जाती हैं। इसलिए आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ कंपैरिजन ऑफ फिल्में कर रही हूँ। लिस्ट में सबसे पहले DDLJ वर्सेस बैंड बाजा बारात की बात हुई। अब नंबर दो पे दिल धड़कने दो वर्सेस जानी तू या जानी ना की बात करना चाहूंगी। दिल धड़कने दो में कबीर जैसे ही फारा को देखता है, रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा को देखते हैं स्विमिंग पूल के पास, तो एक अलग सा कनेक्शन दिखा दिया जाता है और इमीडिएटली उनकी जो किस्मत है वो दोनों के बीच में एक ड्रामेटिक फ्लो ऑफ रोमांस लेकर आती है और स्लो मोशन के जरिए सारी चीजें एकदम मस्त सी हो जाती है ना। वहीं दूसरी तरफ जाने तू या जाने ना, चाइल्डहुड फ्रेंड्स की कहानी और उनका जो ये कोर्टशिप है, जो रिलेशन है, इट इज कॉन्स्टेंट। हाँ, वो कभी बोरिंग हो जाती है, कभी लड़ाई होती है इनके बीच में, बट दैट्स व्हाट अ रियल टाइम रिलेशनशिप लुक्स लाइक, राइट। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट कबीर सिंह वर्सेस बर्फी। सो कबीर सिंह में जिस तरीके से इमोशनल सपोर्ट और प्यार को अग्रेसिव रूप दे दिया गया है, कंट्रोलिंग एंड ऑब्सेसिव रूप दे दिया गया है, दैट वाज रियली वहीं दूसरी तरफ असली पैशन तो बर्फी में दिखाया गया है, वो भी सिंपल कॉन्स्टेंट एक्ट्स ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के साथ। मतलब बताओ, कोई आपके लिए खाना लेकर आए, आपकी डेली की छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बिना बोले सॉल्व करता जाए। Well, मेरी इस लिस्ट में अभी और कुछ ऐसी ही फिल्मों की चर्चा बाकी है, but all of that in a while. Till then, you stay tuned to Mirchi. It's hot.

0: relationships are not just about happily ever afters.
1: Shruti. मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: बट कहीं ना कहीं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अक्सर यही रूप दिखाना चाहती है एक रिलेशनशिप का. हेलो जी, हाय बाबू मोशाय. आज पांच कपंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे फिल्मों की कंपैरिजन कर रही हूँ जिसमें एक तरफ कुछ अनरियलिस्टिक अप्रोचेस ऑफ रोमांस दिखाए गए मूवीज के जरिए, वहीं दूसरी तरफ कुछ फिल्मों ने बहुत ही रियल टाइम प्यार का इजहार दिखाया है. चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर 4 पे लेट्स टॉक अबाउट ए दिल है मुश्किल वर्सेस तमाशा, जहां एक तरफ ए दिल है मुश्किल में आर्ग्यूमेंट्स को ड्रामेटिक और एस्थेटिक रूप दिया गया है, कॉन्फ्लिक्ट का फोकस पैशन, पेन और ड्रामेटिक एग्जिट लाइंस हैं, वहीं दूसरी तरफ फिल्म तमाशा में दोनों ही एक्टर्स के रिलेशनशिप की आर्ग्यूमेंट, उनके बोर्डम, उनके आइडेंटिटी क्राइसिस, उनके करियर की अनसर्टेनिटी, इन सारी चीजों को लेकर होती है जो काफी मेसी होती है, अगली होती है एंड डील्स विद द एक्चुअल रूट्स ऑफ देयर इनकंपैटिबिलिटी. चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर 5 पे लेट्स टॉक अबाउट साथिया वर्सेस वेक अप सिड, जहां एक तरफ साथिया में काफी स्पॉन्टेनियस प्यार दिखाया गया है कि भाई बंदा और बंदी एकदम से मूव इन कर जाते हैं, एक परफेक्ट डोमेस्टिक ब्लिस में जीते हैं, अवॉइडिंग एवरी एंड एनी लॉजिस्टिकल स्ट्रगल, वहीं दूसरी तरफ वेक अप सिड में काफी रियल टाइम चीजें हैं, जहां एक तरफ सिड के लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाया गया है, वहीं दूसरी तरफ आयशा के मैच्योरिटी को बहुत ही खूबसूरती से पिक्चराइज किया गया है. ऑल इन ऑल इन दोनों का रिलेशनशिप इंक्लूड्स मंडेन रियलिटीज लाइक बिल शेयर करना, साफ सफाई करना, और इन सारे डिफरेंसेस के बावजूद एक ही घर में साथ ग्रो करना. तो बाबू मोशाय, अब समझ में आया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हमें प्यार इश्क मोहब्बत को इतना फैंटेसाइज करने पे क्यों मजबूर करती है. मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। मैंने तो जानबूझ के इस फिल्म की टिकट कराई है। आफ्टर ऑल पता तो चले कि भाई ये फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स कैसी सी है, क्योंकि अभी तक टीजर और ट्रेलर में तो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आई है। फिल्म मैं बात कर रही हूँ यश स्टारर अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म टॉक्सिक, जिसकी एडवांस बुकिंग्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। भाई 6 घंटे में इस फिल्म ने 30,000 से भी ज्यादा टिकट्स बेच दी है। इसी के साथ हिंदी ओपनिंग ट्रैकिंग इसकी ₹45.55 करोड़ चल रही है, और अगर ऐसा हुआ तो इट विल बिकम द सेकंड बिगेस्ट एडवांस ऑफ 2026 आफ्टर धुरंधर 2। इमरान हाशमी की अपकमिंग गन मास्टर G9 का टीजर, यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक जिसके बारे में अभी मैं इतनी बातें कर रही थी उसी के साथ अटैच किया जाएगा, दस गिविंग इट एन अर्ली थिएट्रिकल बूस्ट। बाय द वे, इमरान की इस फिल्म को आने में अभी टाइम है, नवंबर रिलीज है भाई इसका। गांधारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ओके, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तापसी पन्नू स्टारर अपकमिंग एक्शन थ्रिलर की बात कर रही हूँ, जिसको लिखा और प्रोड्यूस किया है कनिका ढिल्लो ने, डायरेक्ट किया है देवशीष मखीजा ने, एंड इसकी सेटिंग इज एक माँ की कहानी जो डिटरमिंड है अपनी बेटी को ढूंढने में, और इस बीच उसको जो भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इज व्हाट द मूवी इज गोना शो। माइंड यू, इसका थिएट्रिकल रिलीज नहीं होगा, इट विल स्टार्ट स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स फ्रॉम द 3rd of September, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Delhi Belly, Jalsa, Brown जैसे content के creator. मिस्टर अभिनय दियो
3: मोस्ट लाइकली टू रिमूव बाल की खाल मतलब तह तक जवाब वो बताओ
4: वेट
3: टेल
4: आई हैव अ लिस्ट भयंकर समय लग जाएगा तो उसके अंदर ना घुसे तो ही बेटर है बट मेरे सब लोग आजू बाजू में वही हैं सब बाल की खाल निकालने वाले ही हैं कंटिन्यू व्हाट आई मीन ही इज पास्ड अवे बट माय फादर माय गॉड एनीथिंग दैट आई डू एनीथिंग दैट एनी स्क्रिप्ट हैज सेड बट ऐसा क्यों अरे भाई साहब फिल्म है इमेजिन नो बट व्हाई एंड ही वाज अ फिल्म मेकर एन एक्टर हिमसेल्फ
2: अभिनय दियो द डायरेक्टर इज टॉकिंग अबाउट हिज फादर रमेश दियो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स द हिंदी एंड द मराठी सिनेमा हैज सीन आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल्डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: चेक एयो दिस वन इज फॉर ऑल द लिटिल
6: वेकेशन ओवर हुआ है अब जाना होगा स्कूल लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल बैग्स ऑन योर शोल्डर्स एनर्जी रखना फुल

भाई के पान बनारस वाला फीचरिंग देवानंद। ओके फाइन, इससे पहले कि आप अपने फ्लाइंग चप्पल्स मुझ पे फेंकें, लेट मी टेल यू, ऐसा हो सकता था। इनफैक्ट यही प्लान किया गया था। सो बेसिकली फिल्म डॉन की बात कर रही हूँ, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 1978, जिसमें अमिताभ बच्चन थे, जीनत अमान थी, प्राण थे एंड मोर सच अमेजिंग एक्टर्स, एंड द मूवी वॉज डायरेक्टेड बाय चंद्र बरोट। सो इस मूवी में जो गाना है ना, उखई के पान बनारस वाला, सो ये गाना ओरिजिनली लिखा गया था देवानंद साहब की फिल्म बनारसी बाबू के लिए, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 1973। लेकिन फॉर सम रीजन उस मूवी में ये गाना इस्तेमाल नहीं किया गया, एंड इट वॉज यूज टू बैलेंस द एक्शन पैक्ड पेस ऑफ द मूवी डॉन। जब पूरी फिल्म की शूटिंग वूटिंग हो गई ना, तो उसमें इतना ज्यादा एक्शन भरा पड़ा था कि मूवी मेकर्स को लगा कि भाई इसके पेस को थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, एंड दैट इज वाई इंटरमिशन के बाद ये गाना आपको मूवी में नजर आता है। तभी मैं कहती हूँ, बड़े पर्दे पे दिखने वाली बड़ी बड़ी मूवीज के पीछे ऐसी छोटी छोटी कहानियां होती हैं सेनोरिटा। और वो सारी कहानियां मैं आप तक लेकर आती हूँ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabala, puskabala, sakabala. Rabbala. Burka, burka. Navietbala, burka. Mirchi, burka.
1: हेलो
2: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
1: नहीं, कौन बात कर रहा है?
2: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
1: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
2: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
1: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
2: ओ मेरी बात सुन।
1: कौन बात कौन कर रहा है?
2: ओ महेश।
1: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
2: तो दे, जब जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
1: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और किस तरह से बोलूंगा?
2: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
1: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
2: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
1: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
2: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो रॉन्ग नंबर?
1: फिर वही बात को लेकर आ गया?
2: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
1: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
2: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरे रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। सुनो, मैंने
1: वाली बातें कर रहा है क्या?
2: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रही, और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
1: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
2: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
1: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
2: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
1: भाई तू है कौन?
2: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
1: हाँ रॉन्ग नंबर है।
2: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा
1: राइट नंबर ले
2: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
1: अरे रॉन्ग नंबर,
2: अरे यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
1: चल जा, चल काम कर, चल अब जा।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

0: इन बिल्लियों की कहानी बच्चों के लिए नहीं है।
1: OTT एंड चिल।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हूं आप, मैं हूं आपके साथ श्रुति। और अगर आपको लगता है कि भाई बिल्लियां सिर्फ क्यूट होती हैं, उनका काम बस खाना सोना और एटीट्यूड दिखाना होता है, तो आपको ना रिकी जर्वेस की एली कैट्स देखनी चाहिए। ये नेटफ्लिक्स की एडल्ट एनिमेटेड कॉमेडी है जो 7 अगस्त को आई, एंड आई हैपन टू वॉच इट रिसेंटली, विच इज द स्टोरी ऑफ लंदन की गलियों में रहने वाली फेरल कैट्स, जहां सर्वाइवल भी है, दोस्ती भी है और फुल ऑन केओस भी है। एंड यू नो, सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन कैट्स के थ्रू लाइफ, लोनलीनेस और मोरालिटी जैसे टॉपिक्स भी बड़े फनी तरीके से सामने आते हैं। तो चलो जल्दी से ना 5 पॉइंट्स देती हूँ जिसकी वजह से आपको ये सीरीज देखनी चाहिए। सबसे पहले तो रिकी जर्वेस का तड़का, इस सीरीज को उन्होंने सिर्फ क्रिएट नहीं किया, लिखा और डायरेक्ट भी किया है, जिसमें गस नाम के बिल्ले की आवाज इन्होंने ही दी है। इन शॉर्ट, ह्यूमर में उनका सिग्नेचर सार्कैज़म और इररेवरेंस बहुत अमेजिंग लगेगा। पॉइंट नंबर 2, ये क्यूट कैट्स का वर्जन नहीं है। हाँ, नाम सुन के आपको लगेगा कि भाई इनोसेंट बिल्लियां होंगी या फिर बच्चों के लिए सीरीज होगी। नहीं नहीं नहीं, ये एडल्ट एनिमेशन है जिसमें डार्क ह्यूमर, गाली गलौज और काफी अनअपोलोजेटिक कॉमेडी भी है। पॉइंट नंबर 3, हंसी के पीछे सीरियस बातें। हाँ जी, जिंदगी, मौत, अकेलापन, दोस्ती और सर्वाइवल जैसे टॉपिक्स को ये सीरीज कैट्स की दुनिया के थ्रू सरप्राइजिंगली इंटरेस्टिंग तरीके से

आती है। पॉइंट नंबर 4, छोटी क्विक एंड बिंज वर्दी। इस सीरीज के सिर्फ 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड रफली 15 से 17 मिनट का है, मतलब एक बैठक में आप पूरी सीरीज निपटा सकते हैं। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 5, जो इसको देखने की सबसे बड़ी वजह है, अगर आपको कुछ अलग देखना है, अगर आप रेगुलर सिटकॉम्स और प्रेडिक्टेबल कॉमेडी से बोर हो चुके हैं, तो एली कैट्स का डार्क अब्सर्ड और थोड़ा बिजार ह्यूमर एक रिफ्रेशिंग चेंज जरूर देगा। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: वो जमाना जब म्यूजिक एल्बम खरीदना एक इवेंट हुआ करता था।
1: 90 ml With Shruti.
0: मिर्ची पे ट्यून्ड हो आप और बाबू मोशाय। आज गाना रिलीज होता नहीं है कि कुछ सेकंड्स में ही दुनिया के हर फोन में पहुंच जाता है, वो भी एक नहीं कई एप्स के जरिए पहुंच जाता है। बट 90s में ना म्यूजिक सुनना एक एक्सपीरियंस हुआ करता था यार। कैसेट्स खरीदना, कवर देखना, लिरिक्स याद करना। इनफैक्ट मैं तो भाई एक डायरी मेंटेन किया करती थी लिरिक्स वाली, और उसमें अपने फेवरेट गानों के लिरिक्स लिटरली सुन सुन के रिपीट पे गाने को चला चला के नोट डाउन किया करती थी। और फिर गली मोहल्ले में हमारी एक शॉप हुआ करती थी जहां हम खाली कैसेट ले जाते थे और बोलते थे कि भैया हमें ना ये गाने डालने हैं, आप प्लीज एक चंक बना के हमें दे दो। और भाई उस कैसेट को हम अपने सीने से लगा कर रखा करते थे। इनफैक्ट अगर आपके ग्रुप में किसी को पता चल गया कि आपके पास नए गानों का कलेक्शन आ चुका है, तो फिर वो कैसेट हर इंसान अपने घर एक बार लेकर जाता था और उसकी कॉपी बनवाता था। सो या एक टाइम पे ये ईज हमें काफी अच्छी लगती है, बट जब याद करते हैं उस क्रेज को जो अपने फेवरेट गानों को एक कैसेट में कलेक्ट करने का हुआ करता था, दैट इज नेक्स्ट लेवल। बाकी आपने भी तो अपना कोई फर्स्ट कैसेट कभी खरीदा होगा ना, उसकी बैक स्टोरी बताने के लिए मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे जरूर कनेक्ट करना। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आपके अंदर के फिल्मी डिटेक्टिव को जगाने की है बारी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: So, मेरे शो पे एक नया गेम मैंने इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स देती हूँ और उन प्रॉम्प्ट्स के मदद से आपको मूवी का नाम गेस करना होता है। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है करण फ्रॉम बैंगलोर। आर यू रेडी?
3: या लेट मी ट्राई।
0: फर्स्ट प्रॉम्प्ट इज क्रूज शिप, डबल थम डेब्यू, डबल रोल, एक पल का जीना।
3: होना प्यार है।
0: ग्रेट। कॉलेज कैंपस, आर्मी मेजर, साड़ी वाली प्रोफेसर, मिशन मिलाप।
3: शाहरुख खान एंड सुष्मिता
0: सेन। यस
3: मैं हूँ ना।
0: गुड वन। कार्टून एनिमेशन, एनिमीज टर्न्ड लवर्स, बॉय वर्सेस गर्ल।
3: हम तुम।
0: यस आपका अगला प्रॉम्प्ट है एलियन, बाइसिकल, बास्केटबॉल मैच, धूप।
3: कोई मिल गया।
0: हाँ जी। अगला है कश्मीर, ब्लाइंड गर्ल, टेररिस्ट, ट्रेजिक लव।
3: फना।
0: बहुत बढ़िया। एंड दिस इज द लास्ट वन, अरेंज्ड मैरिज, फायर एक्सीडेंट, जल।
3: सूरज भर जाते हैं।
0: हिंदी में एग्जैक्टली। फर्स्ट टाइम के हिसाब से तो मस्त गेम खेला है आपने। तो इसी के साथ आप बने हैं आज के हमारे
1: फिल्मी डिटेक्टिव।
0: तो भाई ये डिटेक्टिव गिरी कल एक बार फिर से हाजिर होगी राइट हियर ऑन मिर्ची। बट अभी के लिए एंजॉय दी अपकमिंग सॉन्ग्स। मैं हूं श्रुति आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Hello, Mirchi Helpline.
1: Hi there, what's up? Tell me.
0: खाना खाने के 2 घंटे बाद फिर से भूख लग जाती है. क्या करूँ यार, थक गया हूँ.
1: Oh man, it's so simple यार. घड़ी देखना बंद कर देना. Problem solve हो जाएगी. Fantastic.
2: खाने का खोपड़ी तोड़.

0: लाइट्स कैमरा एक्शन क्या क्या क्या अरे भाई वही हम भी फिल्मी हो गए हैं थोड़ा, क्योंकि अब ऐसी बात आएगी तो दिमाग से क्या क्या क्या ही तो निकलेगा। 4:04
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वाह मुलायजा होशियार, गाड़ी धुलाने की गलती मत करना मेरे यार, क्योंकि कतर मेट्रोल डिपार्टमेंट का कहना है कि कल और गुरुवार, बोले तो वेंसडे थर्सडे जुमारात के दिन बारिश हो सकती है। चांसेस ऑफ रेन हैज बीन प्रेडिक्टेड, और अगर ऐसा होता है तो बड़े सालों के बाद अगस्त में देखेंगे बारिश। हां जी, फिलहाल तो बस इतना ही कहूंगा कि इस ख्याल से ही दिल खुश गार्डन गार्डन हो जा रहा है कि अगर बारिश आएगी तो मौसम थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच ये भी क्लियर कर दिया गया है कि 20 सितंबर से पहले ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए कि मौसम एकदम ठीक हो जाएगा। फिलहाल सुहेल स्टार को लेकर सबको लग रहा है कि मौसम अब तो बदलने वाला है, लेकिन उसके लिए भी समय लगेगा। जैसे धीरे धीरे करके सूरज चाचू अचानक से अपनी ब्राइटनेस चमकाए हैं, वैसे धीरे धीरे करके अचानक से गायब नहीं हो जाएंगे, समय लेंगे। इनकी आदत है, ये आ तो जाते हैं, जाने के लिए इनको धक्के भी निकालोगे ना तो भी नहीं जाते। 89.6 मिर्ची 1 पर फिलहाल हर शाम 4 बजे हम आते हैं, नाम है मस्त मौला गौरव, लेकर आए हैं शो शाम शानदार, बातें करेंगे मजेदार, एंड कतर के कोने-कोने में क्या कुछ हुआ मेरे यार ये सब कुछ जाना है हबीबी। तो गुल्लक मिर्ची, बोले तो सुनते रहो मिर्ची, हरारा कतर, इट्स हॉट। देवनगरी पलक मुछाल, कुमार सानू का ये पुराना गाना नए अंदाज में आप यहां सुनेंगे अलका याग्निक जी के बाद।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La
1: virtua la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं।
3: हाँ जी बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी डीडीए से बोल रहा हूँ, आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना,
3: तो हुआ कैसे है? मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
2: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना, अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
3: अरे भाई साहब मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
2: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
3: किस चीज की फीस?
2: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
3: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मेरे मतलब इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
2: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
3: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
2: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
3: ये भी तुम ही देख लो, ये मैं तुम फोन क्यों कर रहा हूँ?
2: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे हम।
3: भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, ये बीक में देख लो हमें ज्यादा।
2: अरे यार
3: आप ढूंढ रहे हो पब्लिक को यार।
2: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो काम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए,
3: फोन आ रहा
2: है। हेलो हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी
3: अरे अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है, जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
2: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
3: तुमने आम इंसान तुमने बनाया ठीक है ना भैया, पैसे भाड़ में
2: गए। आप मेरी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन में लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
3: हाँ बोलो बोलो
4: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
6: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा, फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन्स हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। TNC supply.
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
8: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah

0: पढ़ाई में जिस तरह के रिफॉर्म की जरूरत है वो हमारे कतर में होता रहता है। अब दुनिया आगे निकल गई, लेकिन आप हिस्ट्री सिविक्स वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग पढ़ा पढ़ा के बच्चों की हालत खराब कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन ने आगे बढ़ा दिए कदम।
1: #9749
0: बता दें, कतर के गवर्नमेंट स्कूल में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन ने 2026-27 अकेडमिक ईयर के लिए ना स्कूल करिकुलम में कुछ बड़े अपडेट्स किए हैं और उन्हें अनाउंस किया है, जिसमें एआई और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनको शामिल किया जा रहा है। बदलती दुनिया के साथ बच्चे इस मॉडर्न टेक इंटीग्रेशन की पढ़ाई को कैसे करना है, इनोवेशन बेस्ड तरीके बनाए हैं और लेबर मार्केट की जरूरत में आने वाले टाइम में जिस तरह से डिमांड होगी उसको तैयार करने के लिए एआई और मॉडर्न टेक को इंटीग्रेट करके एक बकायदा अलग सब्जेक्ट बना दिया। इसके अलावा ग्रेड 10th वाला इंटीग्रेटेड साइंस का जो कॉन्सेप्ट है मुझे बड़ा शानदार लगा है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कंबाइन करके एक यूनिफाइड साइंस कोर्स बनाया गया और स्टूडेंट इंटरकनेक्शन समझ पाए अलग अलग सब्जेक्ट्स का आपस में क्या कनेक्शन है, ये बहुत जरूरी है। हम तो सच कह रहे हैं, हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में इतना कम नंबर पाए थे क्योंकि हम एक तो कनेक्शन समझ ही नहीं पाते थे, ऊपर से हमें नहीं समझ आता था कि केमिस्ट्री पढ़ा क्यों रहे हो, हम घर में आज तक एक सर्फ का गोला और बबल ना बना पाए। इन सब के बीच यहां हमारे कतर में जिस तरह से इंटीग्रेटेड कर तीनों को एक सब्जेक्ट बनाने की कोशिश, ये एक बेहतरीन स्टेप है और इसके लिए जोरदार ताले हो जाए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन हमारे कतर के इस नए सीजन के लिए नए करिकुलम को अनाउंस कर रहा है और ये बता रहा है कि आने वाले टाइम में बच्चे टेक्नोलॉजी के साथ साथ एआई के साथ साथ आगे कैसे बढ़ेंगे और मार्केट में जो डिमांड आने वाली है लेबर मार्केट में उसको कैसे पूरा करेंगे, इस पर एक बड़ी रिफॉर्म की गई है। इसके लिए दिल से शुक्रिया। काश हमारे टाइम में भी ऐसा होता तो आज मैं यहां बोल तो रहा होता, साथ ही साथ मेरा एक दिमाग का जो कोना है ना उसमें मैं पैसे और कैसे बनाऊं ये चल रहा होता। हालांकि वो तो अभी भी चलता है लेकिन रास्ते नहीं दिखते। 89.6 मिर्ची वाली थॉट। दर्शन रावल, जोनिता गांधी, रोचक कोहली ने मिलकर ये रोमांचिक गाना गाया है मिर्ची पर इस विश रिबाउंड से।

अगर आप 15 साल से छोटे हैं और मोबाइल फोन यूज करते हैं तो फ्रांस में आप इसे स्कूल नहीं ले जा सकते हैं। यस, हम आपको बता दें फ्रांस गवर्नमेंट में, यस फ्रांस की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि बैन लगेगा मोबाइल फोन को हाई स्कूल्स में लेकर आने पर, और अगले महीने से ये उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे। इतने नहीं, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15 वो सोशल मीडिया पे भी एक्सेस नहीं कर सकते। उन्होंने दोनों ही बैन किया, यानी कि बच्चों का जो 15 साल के आसपास है वो फोन यूज नहीं कर सकते हाई स्कूल्स में, और ना ही सोशल मीडिया एक्सेस कर सकते हैं। एंड फ्रांस की जो पार्लियामेंट है उसने इस लेजिस्लेशन को अप्रूव भी कर दिया है। कुल मिलाकर मैं ही सोच रहा हूं कि यार वाकई में क्या स्कूल में मोबाइल की जरूरत है यार? इन बच्चों को बताना पड़ेगा कि स्कूल में तो मोबाइल फोन की जरूरत है नहीं, और सोशल मीडिया पर क्या है आप इतना ही समझ लो, मैं इतना ही कहूंगा, वहां बिछड़े यार मिलते हैं, हम लोगों से बात करो यार, हमारे पास आइडिया है कि स्कूल में टाइम पास कैसे करना है। आप क्यों यूज कर रहे हो मोबाइल फोन? हम लोग क्या करते थे जब खाली टाइम होता था? हाथों में कैप पहनते थे और दूसरे गेट पे जाके टक टक टक टक मार के भाग आते थे, फिर टीचर पीछे पीछे आता था, कौन था जिसने मेरे डोर को नॉक किया। या फिर हम स्कूल में उसी टाइम पास में क्लास के अंदर अपनी कॉपी को बनाते थे बल्ला और 4-5 पन्नों को फोल्ड करके बॉल और क्रिकेट पे क्रिकेट खेलते थे। ये आजकल के बच्चों का पता नहीं यार मोबाइल फोन में इनको दुनिया क्या दिखती है, हैं जी? हमसे पूछो, हमारे पास 1000 टेक्नोलॉजी है टाइम पास करने की स्कूल में, और स्कूल में आप यादें बनाते हो, ये फोन पे टाइम पास करके कुछ नहीं बनने वाला। यादें बनाओ, बाद में पता लगेगा उसकी कीमत क्या है। आज हमसे कोई मोबाइल ले लो और कह दे स्कूल के दोस्तों के साथ वापस भेज दें, हम तैयार, हमारा मोबाइल ले लो, हमारे स्कूल के डेज हमें वापस कर दो। 89.6 मिर्ची वन, एक बार उड़ गए ना तो वापस नहीं आएंगे, समझो बच्चों। फिलहाल चंदा श्री प्रदा गोपी सुंदर के आवाज में तितली, और कल ओणम है।

0: 25 दिन और लगेंगे फिर गर्मी कम होगी। मस्त मौला गौरव आपके साथ है, और मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रहे हैं डॉक्टर फैसल अल अंसारी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कतर कैलेंडर हाउस, कि 20 सितंबर से नोटिसेबल टेम्परेचर डाउन होगा।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: अब जैसे सबको पता है कि 53 डेज का एक पीरियड शुरू हुआ है जिसको सुहेल पीरियड बोलते हैं। इसमें चार डिफरेंट स्टार्स आते हैं, 13-13 दिन के तीन, और एक चौथा वाला 14 दिन का। वेल, इतना ही कहना चाहता हूं कि 13-13 दिन पहले अल तरफा चल रहा है, उसके बाद अल जाभा आएगा। जब अल जुबरा आएगा तो धीरे धीरे आपको फील होगा कि चीजें बेहतर हो रही है, लेकिन जैसे ही अल जाभा की तरफ बढ़ेंगे चीजें और बेहतरीन हो जाएंगी। कुल मिलाकर अगले 53 दिनों तक आपको थोड़ा और गर्मी का मौसम मिलेगा। उसके बाद 3 अक्टूबर से जब अल वज्म सीजन शुरू होगा, तब जाकर वो राहत मिलनी शुरू होगी, वो फील होनी शुरू होगी। इन सब के बीच कहा यही जा रहा है कि हो सकता है बीच बीच में आपको थोड़ी बहुत रेन मिले, और ऐसे ही क्यूएमडी ने प्रेडिक्ट भी किया हुआ है कि आपको इस वेंसडे यानी कि कल और परसों बारिश मिल सकती है। मैं बारिश में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं बस इस बात से इंटरेस्ट रखता हूं कि दो दिन गाड़ी और नहीं धुलवाएंगे, रिस्क ले लेंगे, कहीं ऐसा हो गाड़ी धुलवाएं और फिर से बारिश हो जाए, फिर धूल मिट्टी खा जाए गाड़ी। हम पैसे बचाते हैं भाई जैसे ही बारिश की बात सुनते। इसी उम्मीद में कि आप भी ऐसे ही कर रहे हैं। मस्त मौला गौर बता दे कि अभी भी दिन का मैक्सिमम तापमान जबरदस्त बना हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है, पानी पी के इसको कोसते रहिए। दिन का मैक्सिमम 42, मिनिमम 33, एंड हवाओं की रफ्तार की बात करें तो ये जरूर कमजोर है। हाँ जी, ये 12 किलोमीटर से भी कम चल रहा है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी फील हो रही है 44% के आसपास। घबराओ नहीं, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक के लिए भंकास बप्पीदा देवनेगी जोनीता मिलकर गाओ।

0: वे जुनू, सुबोध शर्मा की आवाज में ये गाना आपके कानों में जुनूनियत के साथ कैसे सुना। मस्त मौला गौरव। खबरदार जो घड़ी की तरफ टाइम देखे, अरे हम बता रहे हैं 5:04 होने को आ रहे।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: अब देखिए मैं आपके साथ हूँ तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, घंटा है जब बजे का 5, तो खेलते हैं जना
2: पहचान कौन।
0: और पहचान कौन में आज एक आवाज सुना रहा हूँ और बताइए ये किसकी आवाज है। बड़ा ही शानदार कलाकार है।
3: आखिरी में ट्रेन में जो विदा किया था उनको, तो वो प्रेम प्रसंग, जो पहला प्रेम प्रसंग था मेरा कायदे से, कि जो है मतलब जो अधूरा छूट गया, तो ये था बड़ा दुखांत एंड हुआ था।
0: बड़ा दुखांत एंड हुआ। और ये आवाज आपने कई फिल्मों में सुनी है, इनके गाने बेहतरीन हैं, ये लिरिसिस्ट राइटर हैं, ये एक्टर हैं और कमाल है।
3: आखिरी में ट्रेन में जो विदा किया था उनको, तो वो प्रेम प्रसंग, जो पहला प्रेम प्रसंग था मेरा कायदे से, कि जो है मतलब जो अधूरा छूट गया, तो ये था बड़ा दुखांत एंड हुआ था।
0: लेकिन ये उतने ही शानदार अभिनेता है, भले ही इनका प्रेम प्रसंग बड़ा दुखांत अंत के साथ था, लेकिन ये शानदार एक्टर है। बस इतना ही हिंट में दूंगा, एक आखिरी बार आवाज सुनो और बताओ ये किसकी आवाज है।
3: आखिरी में ट्रेन में जो विदा किया था उनको, तो वो प्रेम प्रसंग, जो पहला प्रेम प्रसंग था मेरा कायदे से, कि जो है मतलब जो अधूरा छूट गया, तो ये था बड़ा दुखांत एंड हुआ था।
0: बस बात खत्म हो गई, अब आपको इसका जवाब देना है और जवाब देने के लिए 5000 1896 पर जवाब देना है और वॉइस नोट के साथ देना है, जैसे कि सबसे पहले भाई साहब ने दे दिया। अभी भाई आपका जवाब मिल गया है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जवाब भेजा है, लेकिन मैं कह रहा हूं अपनी वॉइस नोट में इस जवाब को भेजिए, बात खत्म हो जाएगी। हम यहां पर सही जवाब बता देंगे आपसे थोड़ी देर में और इनका ही गाना भी सुना देंगे, मिर्ची इट्स हॉट।

0: लेकिन आप क्यों सरेंडर हो रहे हैं? बड़ी सिंपल सी तो आवाज है। यस, इस घंटे आप मेरे साथ खेलते हो पहचान कौन, और पहचान कौन में मैं आपको एक आवाज सुनाता हूँ और आपको पकड़ना होता है ये किस आर्टिस्ट की है।
1: आखिरी में ट्रेन में जो विदा किया था उनको, तो वो प्रेम प्रसंग, जो पहला प्रेम प्रसंग था मेरा कायदे से, कि जो है मतलब जो अधूरा छूट गया, तो ये था बड़ा दुखांत एंड हुआ था।
0: बड़ा दुखांत एंड हुआ था। इस आवाज को ध्यान से सुनिए, इस आर्टिस्ट को आपने जब भी देखा है आप कहें कमाल के एक्टर हैं ये।
1: आखिरी में ट्रेन में जो विदा किया था उनको, तो वो प्रेम प्रसंग, जो पहला प्रेम प्रसंग था मेरा कायदे से, कि जो है मतलब जो अधूरा छूट गया, तो ये था बड़ा दुखांत एंड हुआ था।
0: और ये शानदार एक्टर हैं, अच्छे लिरिसिस्ट रहे, मतलब लिरिसिस्ट भी हैं एंड साथ ही साथ एक्टिंग कमाल करते हैं। बताइए, गाना भी गाया हुआ है, अब इससे ज्यादा क्या हिंट दे। 5001896 पर जिन लोगों ने सही जवाब दिया, आपसे थोड़ी देर में आप सबको यहाँ सुनाऊंगा, आपके नाम पढ़ूंगा, जिन्होंने लिख के भेजा सबको बताऊंगा। ये मिर्ची पर एक आखिरी मौका आपको दे रहा हूँ, 5001896 पर वॉइस नोट पर अपना जवाब भेजो कि हाय गौरव, मुझे लग रहा है ये फला एक्टर है। मिर्ची थॉट
2: हेलो
3: हेलो
2: हाँ जी
3: विवेक जी,
2: हाँ जी बताइए।
3: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं?
2: ऑफ कोर्स।
3: विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मज़े। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाज़ा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
2: हाँ ठीक ही कह रहे हो।
3: नहीं मैंने तो देखिए मैंने हमदर्दी में कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
2: अब आपको पता ही है हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने नहीं है। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
3: अच्छा
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता। हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखता
3: हूँ, ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
2: हाँ हाँ जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
3: क्या हुआ, क्या था भाभी से आपकी बात, क्या हो गई थी?
2: अरे कुछ नहीं यार।
3: नहीं फिर भी क्या, मतलब काफी चीखों की आवाज है, क्या हुआ क्या था?
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी थी बस हमारी मिसेस की।
3: अच्छा अच्छा।
2: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
3: अच्छा ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
2: हाँ अभी इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत।
3: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
2: मजे आ रहे
3: हैं, बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
2: अरे
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ only on मिर्ची It's hot
5: driven by Shackman Trucks, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर। Shackman heavy duty trucks and boom trucks, power that saves, distributed by Carmel Group.
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: दर्शन रावल, रोचक कोहली, जोनिता गांधी और ये गाना हमने सुना दिए। यार इतनी प्यारी मीठी आवाज में गाना कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन फिलहाल मेरे साथ आपको अच्छा लगता है इस घंटे खेलना। और पहचान कौन में एक आवाज आती है आपको पकड़नी होती है, ये किस एक्टर की आवाज है।
1: आखिरी में ट्रेन में जो विदा किया था उनको, तो वो प्रेम प्रसंग, जो पहला प्रेम प्रसंग था मेरा कायदे से, कि जो है मतलब जो अधूरा छूट गया, तो ये था बड़ा दुखांत एंड हुआ था।
0: बड़ा दुखांत एंड हुआ था। और मैंने पूछा बताओ ये कौन से एक्टर है।
2: हाय गुड इवनिंग गौरव
0: जी, जी
2: अभिलाष। आई थिंक द वॉइस नॉट दैट यू प्लेड इज ऑफ रमजान।
0: रमदान गड़बड़ हो रही है। आपने अख्तर बोला लेकिन आपने लिखा जावेद अख्तर और जवाब में ये बोला है। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं जी।
3: नमस्कार गौरव भाई।
0: भाई भाई भाई
3: सॉरी, पीयूष मिश्रा ने गाया है। मैं राघवेंद्र बोल रहा हूँ, इलाइट इंटरनेशनल से।
0: अच्छा ठीक है, गाया नहीं है, आवाज सुनाइए मेरे भाई इलाइट इंटरनेशनल से। चलो ठीक है आगे बढ़ो।
4: हाय गौरव, ये okay. वॉइस है पीयूष मिश्रा की।
5: पूरी गौरव, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
0: ठीक है यूसुफ भाई।
5: यूसुफ
0: जी जी भाई,
5: ये आवाज है पीयूष मिश्रा की। एक्चुअली मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, वो जो तमाशा में स्टोरी टेलर है ना।
0: हाँ जी,
5: जो फर्स्ट में कहते हैं यही है ना पीयूष मिश्रा। मैं नाम में कंफ्यूज हो गया था थोड़ा,
0: सुधीर
5: मिश्रा होगा या पीयूष मिश्रा होगा, इसलिए थोड़ा लेट में जवाब दिया। ओके
0: कोई बात नहीं, थैंक यू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
6: दिस इज मनीष एंड द आंसर इज पीयूष मिश्रा।
0: ओके मनीष, चलिए आगे और बढ़े, और भी लोग हैं।
7: हेलो गौरव, आई थिंक दिस वॉइस इज पीयूष मिश्रा।
8: हाय गौरव, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग,
8: मेरा नाम जसीम खान है
0: जी जी।
8: और जो आपने वॉइस नोट सुनाया है वो पीयूष मिश्रा जी का है।
7: हेलो गौरव, आई थिंक दिस वॉइस इज पीयूष मिश्रा।
0: भाई एकदम जबरदस्त तालियां हो जाए, चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट। यस, ये वॉइस इज ऑफ पीयूष मिश्रा एंड एक शानदार अभिनेता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब भी आते हैं ना, एक अलग से एनर्जी, एकदम माहौल बना देते हैं। और गैंग्स ऑफ वसीपुर हो या फिर तमाशा हो या फिर गुलाल जैसी फिल्में हो, अनुराग कश्यप के बड़े फेवरेट एक्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड बड़ी बात यह है कि ये जब भी आते हैं एक अलग सा माहौल तो बना ही देते हैं। एंड इनको हमने बहुत पसंद किया है ज्यादातर फिल्मों में, इनकी एक्टिंग कमाल की है। और इनका एक गाना, एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां, हम चांद की चादर बिछा के। भाई कुल मिलाकर इनके गाने को अब से थोड़ी देर में हम प्ले करेंगे। अभी आज से तेरी और मेरी दोस्ती और गहरी हो गई। इस कॉम्पिटिशन में जबरदस्त जवाब दिया आप लोगों ने, इतना कठिन था उसके बावजूद आप लोगों ने निकाला। आज मेरा दिल गार्डन गार्डन है और ताली हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिर्ची इट्स हॉट।

है पंकज उदास साहब की आवाज में 1994 जुलाई के महीने में आई ये फिल्म, नाम था मोरा। सच बताऊं स्कूल में हम सब दोस्त भी ये गाने गाए, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। इस पिक्चर के कुछ गानों की बात की जाए तो शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, लेकिन पंकज उदास साहब की आवाज में एक गाने की बात ही अलग थी। फिलहाल साधना सरगम जी ने इनका साथ दिया था एंड मैं आपसे कह रहा हूं हमें आपका साथ चाहिए। यार ये सुहानी कर कैसे लेती है समझने में। हां जी मस्त मोरा गौरव आपके साथ है, दी बेंटली सुहानी शाह लाइव इन कथा फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम। एंड सुहानी का टीवी शो भी चल रहा है एंड उस टीवी शो पर इस हफ्ते उन्होंने बमन उरानी को बुलाया था। और बमन उरानी को बुलाने से पहले उन्होंने पब्लिक से पूछा कि आप अगर उनकी मूवी कोई चूज करनी हो तो कौन सी करोगे। तो क्राउड में एक लड़के ने बोला कि मैं चूज करूंगा मुन्ना भाई MBBS। तो फिर सुहानी ने एक पोस्टर घुमाया, यू विल चूज दिस। हाँ जी, तो सबको लगा कि अरे ये तो यू विल चूज दिस तो यही होगा। फिर दूसरा पोस्टर घुमाया तो उसमें लिखा था यू विल चूज मुन्ना भाई MBBS। अंकल वाज शॉक्ड एंड सुहानी हैज रॉक्ड। यस, कुल मिलाकर वही सुहानी शाह जो लोगों के दिमाग को पढ़ लेती हैं एंड आपको अपने इल्यूजन से ऐसा जादू दिखाती हैं कि आप रियलिटी की दुनिया में हक्के बक्के रह जाते हैं, वो कतर आ रही हैं एंड आपको अपनी टिकट्स बुक कर लेनी है एट ऑल लीडिंग प्लेटफॉर्म टिकट्स। हाँ जी, टिकट की जितने प्लेटफॉर्म है सब जगह मिल रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपको एस सिटी स्नूनू पर 30 कतरे रियाल का कैशबैक मिल रहा है और अर्ली बर्ड ऑफर भी चल रहा है। जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट्स बुक कर लो, यू नेवर नो ये मौका फिर होता हो। तो टिकट्स बुक करो और उस शाम सिर्फ सुहानी का शो नहीं होगा, वहां पर डांस म्यूजिक मस्ती का धमाल भी होगा जब चरण और आसी एक साथ परफॉर्म करेंगे। कैसे उसके लिए इंतजार करो, प्रैक्टिस शुरू करो, हम अभी से प्रैक्टिस करा रहे हैं। मिस्ती करें मिर्ची।

0: decades of excellence in Qatar. घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरो मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल। और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरो मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar, this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live in

आदत से तो मजबूर हम भी हैं, और 15 तारीख के बाद तो मेरी आदत सबको पता है कि गौरव कभी भी उधार मांगने के लिए फोन करता है और वापस देने के लिए भी कभी फोन नहीं करता। लेकिन सबके बीच अगर आपके पास है तो दोस्तों ये टाइम है बाड़ी ते टका पाटिए डाओ, यानी कि घर भेजवाओ। राइट नाउ एक कतरी रियाल के बदले इंडियन रुपीज 26 रुपए 21 पैसे 26.21 INR, वहीं 1 कतरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज 90.12। अगर हम बात करें पाकिस्तान रुपीज की जनाब, वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.19 आपको मिल जाने, 76.19 पाकिस्तान रुपीज का रेट अगेंस्ट 1 कतरी रियाल। एंड तपाई को नेपाली रुपीज का रेट छो 1 कतरी रियाल के बदले वही 41.88 का रेट छो, हाँ जी 41.88 को रेट छो। अगर नेपाल पैसा भेजा लाए तो सही टाइम छो। अब इसके बाद बांधो और घर भेजना है टका तो 1 कतरी रियाल के बदले 33.62 33.62 आइटर रेट अच्छे तो बांग्लादेशी टका तो बाड़ी ते टका पाटे दाओ मस्त मौलगौर के साथ सुनते जाओ 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: यार, मेरी ऑफिस में कोई कुछ काम ही नहीं करता, सब एक दूसरे को काम चिपकाते रहते हैं, क्या करूं मैं?
1: अब ये सोचने का काम भी तू मुझे चिपकाएगा हुँ?

0: अखिया गुलाब मित्रास की आवाज गाना सुनाया किसने जनाब? मस्त मौला गौरव आपके साथ अब इम्पोर्टेंट बात शेयर करने जा रहा है। अरे मतलब घड़ी का टाइम आपको देखने का देता हूँ, 6:08 होने आ गए।
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वैसे बैक टू स्कूल की सबने अपनी अपनी तैयारी की है, लेकिन हमारे पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी अजगाल ने जो किए ना वो सबसे इम्पोर्टेंट थी। मोर देन 670 स्कूल्स इन कतर के आसपास जो भी ट्रैफिक सेफ्टी मेजर्स थे ना उनका काम कंप्लीट किया है, ताकि जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजें तो इस सुकून से भेजें कि स्कूल के आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल फॉलो किए जा रहे हैं। एंड मैं कहता हूं हमारे आपकी भी ड्यूटी बनती है, बच्चों को जरूर सिखाएं रोड साइंस के मतलब क्या क्या होते हैं। वेल, इसी के साथ मस्त मौला गौरव ने कहा कि जब स्कूल जोन ट्रैफिक सेफ्टी प्रोग्राम में पूरी की पूरी चीजें चल रही हैं और ये 2013 से लगातार चली आ रही है, इसके लिए बकायदा इंजीनियर अब्दुल्ला अलमाराकी साहब जो कि रोड सेफ्टी इंजीनियर है अजगाल रोड्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, उन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन की है। थैंक यू सर, आपकी वजह से हम बच्चों को और सजग कर पाते हैं। वेल, हाईएस्ट इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो किया जाता है कतर में, तो मैंने कहा चलो एक साइन आपसे भी आज पूछ लें। हाँ जी, आज मस्मौला गौरव आपसे एक सवाल पूछ रहा है, ये जो उल्टा ट्रायंगल के अंदर कुछ लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा रोड साइन पर एक उल्टा ट्रायंगल होता है, उसका मतलब क्या है आज आपको यही बताना है। ये बहुत ही आसान है, इतना कहूंगा ये उल्टा ट्रायंगल है रेड कलर में, अक्सर आप देखते होंगे, आप जब अपने घर से भी निकलते हैं कई इलाकों में जहां पर मेन रोड से जुड़ रहे हैं वहां पर आपको ये उल्टा ट्रायंगल दिखता है। कैन यू टेल मी ये उल्टा ट्रायंगल विद अ रेड बॉर्डर एंड व्हाइट बैकग्राउंड ये क्या कहता है? अगर आपको पता है 5000196 पर मस्त मौला गौरव को जल्दी से बताइए। हैं जी, जितनी जल्दी हो सके वॉइस नोट बताइए कि गौरव इसका जवाब ये होता है। एक भाई साहब ने सबसे पहले बताया है, आपके लिए तो तारीफों के पुल बांधूंगा मैं, बस अब से थोड़ी देर में आपका जवाब यही सुनाऊंगा। थैंक यू मनोहर भाई, 89.6 मेरे जीवन थॉट। बंजारे के आवाज में ये गाना बैरन जो कि हरियाणवी फील

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
2: नहीं, कौन बात कर रहा है?
3: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है।
2: अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
3: ओ मेरी बात
2: कौन
3: सुन।
2: बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
2: फिर वही बात को लेकर आ गया?
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर। और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मैंने तुझसे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू में
2: वाली बातें कर रहा
3: है? मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहे। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं नहीं, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
2: रॉन्ग ले रहा हूँ
3: राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे रॉन्ग नंबर,
3: अरे यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू,
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: हाँ जी हुसन तेरा तोबा तोबा बैड न्यूज टू का ये गाना किसने सुनाया? बैड न्यूज वन तो मेरी जिंदगी में बहुत रहती है। फिलहाल बैड न्यूज का ही गाना सुनाकर मैंने आज एक सवाल पूछा, उसके जवाब देने की बारी आ गई है। सवाल हमारे कतर में अशगल ने स्कूल के आसपास मोर देन 670 स्कूल के आसपास ट्रैफिक सेफ्टी मेजर्स का जो काम था वर्क था उसको कंप्लीट किया। और मैंने एक सवाल पूछा कि हमारे कतर में एक ट्रैफिक साइन है जो कि होता है व्हाइट बैकग्राउंड में रेड सर्कल के अंदर उल्टा ट्राइंगल इन रेड कलर, व्हाट डज दैट मीन? यही सवाल मैंने पूछा है। जवाब देते हुए लोग आगे आ गए। हेलो, अगर भाई साहब मैं आपसे पूछूं तो हमें इसका जवाब बताइए कि ये मतलब क्या होता है जो हम आपसे इसको कहना चाह रहे हैं कि अगर आप उल्टा ट्रायंगल देखते हैं तो कतर में उसका मतलब क्या है?
1: अस्सलाम वालेकुम गौरव भाई, आपने जो सवाल पूछा उल्टा ट्रायंगल का, उसका साइन का मतलब होता है
0: गिव वे। ओके,
1: गिव वे का साइन है।
0: ओके ओके, और कौन है?
2: हाय गौरव भाई।
0: हाय हाय हाय, बढ़िया भाई।
2: मेरा नाम मनोहर है।
0: जी मनोहर भाई, सबसे पहले बोला
2: क्वेश्चन है वो गिव वे, रास्ता देना है।
0: रास्ता देना है, ओके।
3: ये गिव वे का साइन है।
0: ओके, गिव वे। ओके
4: गौरव, हां जी, गुड इवनिंग जी। अभी आपने जो सवाल पूछा उल्टा ट्रायंगल, इट मींस स्टॉप एंड गो। ओके, थैंक यू।
0: अरे यार, यहां थोड़ा सा फंस गए यूसुफ भाई। इट्स नॉट स्टॉप एंड गो, इट्स गिव वे। स्टॉप एंड गो में तो गाड़ी रुकेगी रुकेगी, लेकिन गिव वे में ऐसा नहीं है। गिव वे में आप जाते हैं, लेकिन अगर देख रहे हैं सामने वाला पैसेज क्लियर है तो फिर आप अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ सकते हैं, आपको स्टॉप नहीं करना है। लेकिन स्टॉप एंड गो में आपको मैंडेटरी स्टॉप करना है। वेल, इतना ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन बस गाड़ी आप आराम नाल चलाइए, वही ज्यादा जरूरी है। बच्चों की सेफ्टी का पूरा ध्यान दीजिए जब बच्चे स्कूल लौटेंगे। एंड थैंक यू टू अशगल जिन्होंने बच्चों के लिए सारा काम किया और स्कूल का बेस्ट माहौल बनाए रखा। मिर्ची थॉट।

0: कोका कोका गाना गा दिया सुखी बाजी ने, सुना दिया किसने? एंड भाई इंडियन टीम क्या कमाल करने वाले हो भाई, कोशिश करो ये मैच भी जीतो।
1: क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी का, सबका अपडेट बताएगा रे तिरम मिर्ची।
2: स्पोर्ट्स अपडेट
0: में सबसे पहले कतर के हाथ लगी उस कामयाबी के बारे में जो लुसेल इंटरनेशनल सर्किट के नाम आई है। मोस्ट इंप्रूव्ड एंड बिगेस्ट मूवर इन सस्टेनेबल सर्किट इंडेक्स 2026। भाई पूरे दुनिया में जितने भी ये सर्किट्स हैं, यानी कि कह सकते हैं जहां पर फॉर्मूला 1 रेसेस होती हैं, उनमें हमारे कतर को सस्टेनेबिलिटी के नाम पर एक जबरदस्त अवार्ड हाथ लगा है एंड FIA 3-star एनवायरमेंटल एक्रीडेशन मिला है। ये हाईएस्ट लेवल रिकॉग्निशन है, जिस भी इंटरनेशनल वेन्यू की बात कीजिए, कतर के पास ये तमगा आने से हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी के मामले में हमारा कोई जवाब नहीं है। लेकिन जवाब तो इंडियन बॉलिंग के आगे इस वक्त श्रीलंकन टीम को देना है। यस, इंडियन टीम के बड्डे स्कोर के आगे श्रीलंका की टीम आज डे 3 पर, हाँ जी, स्टंप से पहले 265/8 के स्कोर पर अपनी इनिंग्स में है एंड इंडियन टीम स्टिल लीड बाय 238। हालांकि ट्रेल श्रीलंका के लिए कहेंगे 238 का है और इंडिया चाहेगा कि कल जल्दी समेट कर फॉलो ऑन दे और श्रीलंका चाहेगा कि फॉलो ऑन ना ले। इन सब के बीच बाबर आजम लॉर्ड्स टेस्ट में खेलेंगे या नहीं, अब कल जब टेस्ट होगा तो पता लगेगा कि वो सही है कि नहीं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो पाकिस्तान फिर 2 स्पिनर्स भी उतार सकता है। इन सब के बीच क्या उतार पाएंगे नंबर 1 की कुर्सी से जर्मनी के कीमर को आज हरा कर, अब डिफेंडिंग चैंपियन कारवाना से मुकाबला करेंगे प्रज्ञा नंदा ग्रेस चेस टूर्नामेंट के फाइनल में, एंड ऐसे में अगर वो ये जीत जाते हैं तो वो डिफेंडिंग चैंपियन कारवाना को हरा कर नंबर 1 बन जाएंगे एक बार फिर से। ऑल द बेस्ट प्रज्ञा, आई नो तुम शानदार खेलोगे और मैं कहता हूं सुहानी शाह को एक बार फोन कर लो, वो सही मूव बताएगी, सामने वाला जो चल रहा है उसके हिसाब से तुम अपनी पारी सेट कर लो। 89.6 मिर्ची।

नितिन बाली और आपका ये गाना हमें हमारे फिर से उस पुराने दौर में ले जाता है। लेकिन मुझे डर और खौफ के दौर में ले जा रही है सुहानी शाह। कैसे कर लेती है यार ये इतना सारा काम एक साथ, मतलब दो चार लोगों को बैठाए बैठाए ऐसा सवाल पूछती है, फिर उस पर ऐसा जवाब देती कि सामने वाला भी हक्का बक्का कि ये मेरा दिमाग चल रहा है कि ये इसके दिमाग के हिसाब से मेरे दिमाग में चलवा रही है। बिल्कुल मिलाकर दी मेंटली सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। Yes, sponsored by Qatar Calendar, presented by iPay, and ये कैसी शाम जहां पर आपके दिमाग के साथ ऐसा खेल होगा जो आपने इससे पहले कहीं नहीं देखा है। Yes, associate partner Dairy Queen, Papa Jones, refreshment partner Baladna, healthcare partner Kim's Health Medical Center, partnered by Daiso Japan, Home Zaras, restaurant partner Absolute Barbecue, event partner Cube Events, media partner Rehab Media, production partner Symphony, branding partner Brand Arts, marketing partner Q Square, ticketing partner SCT Snow and social media partner social drive। ये सब एक साथ आए हैं ताकि एक बेहतरीन शाम आपको हम दे पाए, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी है दोस्तों आपको। यस, और मेहनत कैसे करनी है, सिर्फ टिकट बुक करनी है, और उसमें भी पैसों की बचत करा रहे हैं हम, क्योंकि एस सिटी स्नूनू जो कि हमारी टिकटिंग पार्टनर है वहां पर ये टिकट्स आपको 30 कतरी रियाल के, यस 30 कतरी रियाल के कैशबैक ऑफर के साथ मिल रही है, और अर्ली बर्ड ऑफर अलग से चल रहा है। जितनी जल्दी हो सके आप अपनी टिकट बुक कर लो, बाद में कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला इस समझ लो। और लड़की सुहानी के लिए अगला गाना रफ्तार भाई खुद गा रहे हैं, क्योंकि उनके सबसे पहले टीवी शो पर वही आए थे। मिर्ची थॉट

0: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
1: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
2: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
0: उसे सब पता है.
3: शी कैन रीड योर माइंड. शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: अभी मिर्ची हेल्पलाइन से बात हो रही है।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अरे भाई, मेरी बीवी कहती है मैं जब से मैनेजर बना हूँ तब से खड़ूस हो गया हूँ। घर पे भी ऑफिस की तरह बिहेव करता हूँ, जरा भी रोमांटिक नहीं रहा। अब क्या करूँ भाई मैं?
1: अरे तो सिंपल है ना, ऑफिस में रोमांटिक बनना स्टार्ट कर दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: गुलाबी साड़ी में तू लग रही कमाल। ये गाना किसने सुनाया? यार एआई कुछ भी करता है। शाम के 7:04 से ज्यादा
1: इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: यार एआई की दुनिया अलग ही है एंड ट्रस्ट मी, मैं कहता हूँ कि आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। आजकल मैं आपको एक बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे आप किसी दोस्त का बर्थडे है ना, आप हैप्पी बर्थडे उस दोस्त का नाम लिखिए, आपको उस नाम से विश करता हुआ गाना गाता हुआ एक पूरा का पूरा गाना आ जाएगा। एंड मैं अपने कई दोस्तों के लिए यही वाली ट्रिक लगाता हूँ और उसे लगता है यार गौरव ने कितनी मेहनत की है, बकायदा गाना इतना ढूंढा है और मेरा नाम तक उसमें ला दिया है। थैंक यू टू एआई वर्ल्ड। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए कतर के स्कूल्स में भी भाई अब एआई टेक्नोलॉजी इनको लेकर नए सीजन में कोर्सेज शुरू हो गए एंड ये एक जबरदस्त रिफॉर्म है स्टडीज में। क्योंकि मेरा ये मानना है कि दुनिया जब तेजी से एआई के कारण बदल रही है, आने वाले टाइम में इसी वजह से बहुत सारी जॉब क्रिएशन होगी, एआई ही दुनिया में सब कुछ लेकर आएगा। तो कतर ने इसके लिए एक जबरदस्त शुरुआत कर दी है और इस बार आपके बच्चों को बहुत जगहों पर ये नए कोर्सेज भी मिलने वाले हैं और ये बताता है कि कतर आगे की सोचता है और बकायदा उस पर काम कर रहा है। इन सब के बीच मैं आपको बता दूं कि नया एकेडमिक ईयर शुरू हो रहा है। कतर के जो स्कूल्स हैं वहां पर नया एकेडमिक ईयर है। हालांकि हमारे बच्चों के स्कूल्स मई जून में ही हो जाते हैं, लेकिन यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने बहुत बड़ी बात कही है, सेफ हेल्दी एंड सस्टेनेबल स्कूल एनवायरमेंट बनाने की बात कही है एंड उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेस दिया है फूड पर। बच्चों के साथ वही खाना पीना दीजिए जो उनको हेल्दी और न्यूट्रिशन दे, हैं जी। बच्चों को ज़्यादा ऐसा फूड ना खिलाएं जिससे वो फूलते जाएं और उन्हें कहीं बाहर जाने में आलस आए। मम्मी हमको यही बोलती थी, इतना खा के मोटे मत हो जाओ कि बाहर जाने में तुमको आलस आए। कभी कभी याद आता है यार मम्मी का बहुत कुछ। मम्मी चली गई ना यार, लेकिन उनकी कुछ बातें आज भी याद हैं कि दाल चावल रोटी सब्जी में जो ताकत है वो किसी और खाने में है ही नहीं। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट। वैसे माँ बेटे का रिश्ता भी दुनिया में सबसे पुराना रिश्ता होता है क्योंकि वो बाकी सारे रिश्तों से 9 महीने ज्यादा होता है। अब बैक टू स्कूल की बात आती है तो मुझे मम्मी की वो सुबह सुबह चीनी वाली रोटी, कभी आलू की सब्जी, सब याद आती है यार।
2: तू

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Na vidva la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Kaun?
2: Hello, Vipin.
1: कौन बोल रहा है?
2: इस्ता। मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
1: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
2: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
1: भाई तो इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
2: भाई मानो, मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ, और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से। पासपोर्ट जिसका बन रहा होता है पाड़ के फेंक देते हैं, 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे, उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है। मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
1: पहले किया था।
2: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
1: ऑनलाइन की थी।
2: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
1: जाना जरूरी है?
2: कहाँ जा रहे हो?
1: दुबई।
2: अच्छा, तो दुबई जाना है?
1: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
2: नहीं, मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
1: हाँ ठीक है ठीक है,
2: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
1: आपने सही कह रहा
2: है। हाँ, तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
1: बताओ।
2: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा हैं बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
1: मैं तो पागल है क्या?
2: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ,
1: करवा देना भी है आपसे।
2: मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
1: सॉरी सॉरी सॉरी।
2: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा, हैव अ सेफ फ्लाइट।
1: Okay, okay.
2: I love you.
1: I love you too.
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बैक टू स्कूल में ऑफर ही ऑफर चल रहा है। मैं तो देख रहा हूँ भाई, शॉपिंग मॉल से लेकर बड़े बड़े हाइपरमार्केट्स तक बैक टू स्कूल। इनफैक्ट मोहल्ले वाले बकाले वाले भैया लोग भी आने वाले टाइम में देखना बैक टू स्कूल ऑफर लगा देंगे। लेकिन इन सब के बीच हमारे बच्चों के स्कूल की ये जर्नी बिल्कुल सेफ हो और स्कूल के आसपास उन्हें किसी तरह का डर ना हो, इसको भी मेक श्योर किया है हमारे कतर के अशगल ने।
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: कतर के 674 स्कूल्स के सराउंडिंग जोन में ट्रैफिक सेफ्टी मेजर्स का जो वर्क चला था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। Yes, और अब आपको बता दूं यहां पर आपको मिलेगी नई रोड मार्किंग्स और बहुत ज्यादा साइडवॉक्स को थोड़ा वाइडन किया गया है, स्पीड हम्स बढ़ाए गए हैं, प्रोटेक्टिव बैरियर्स लगाए गए हैं और मैक्सिमम स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर पर आवर की गई है। और इसके साथ ही साथ एक्सेसिबिलिटी रैम्स भी बनाए गए हैं, इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है वो स्कूल अपने एकदम सेफली पहुंचे, कोई दिक्कत ना हो। और ये सारी बात खुद बताई इंजीनियर अब्दुल्ला अलमारागी साहब ने, रोड सेफ्टी इंजीनियर है अशगाल रोड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। और उन्होंने कहा स्कूल जोन ट्रैफिक प्रोग्राम 2013 में शुरू किया गया था और हर साल इस पे लगातार काम होता है, ताकि स्टूडेंट का जो स्कूल अराइवल टाइम है, डिसमिसल टाइम है, उस दौरान उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे में दोस्तों हमारा और आपका भी फर्ज बनता है कि जब हम किसी स्कूल जोन में हैं तो गाड़ी थोड़ी स्लो चलाएं, स्पेशली अगर वो टाइम है बच्चों के स्कूल छूटने का या बच्चों के स्कूल आने का, तो हमें थोड़ा ध्यान देना है। एंड मैं इतना भी कहूंगा कि पेरेंट्स की भी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को ट्रैफिक साइनेज के बारे में जरूर बताया करें, इससे बच्चों में और अवेयरनेस आती है। इस उम्मीद से कि आपका बच्चा सेफली स्कूल आएगा, लौटेगा एंड इस बार एकेडमिक ईयर में कमाल करेगा, मस्त मौला गौरव आगे बढ़ता है। बच्चों ऑल द बेस्ट फॉर बैक टू स्कूल। मिर्ची इट्स हॉट।

क्या आपके ना चाहते हुए भी कोई आपको मैसेज भेज रहा है? हाँ। क्या आपको अनवांटेड कॉल्स आ रही हैं? हाँ। क्या आपको स्पैम ईमेल्स आ रहे हैं? हाँ भाई हाँ, तो अब नहीं आएगा। क्योंकि हमारे कतर की नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने हम सबको रिमाइंड कराया है कि हमारे पास किसी भी वक्त कतर की हर प्रमोशनल एंड इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से अपना कंसेंट विड्रॉ करने का पूरा राइट है। कंपनीज को अगर अपना प्रमोशनल मैसेज भेजना है तो उन्हें हमारा एक्सप्लिसिट कंसेंट लेना जरूरी है, और अगर ऐसा वो नहीं कर रहे हैं और बार बार आपको रिपीटेड प्रमोशनल एसएमएस, ईमेल्स या अनवांटेड कॉल से इरिटेट कर रहे हैं तो आपके पास मौका है। पहले तो अपना कंसेंट विड्रॉ कर लीजिए, और अगर उसके बाद भी आपको स्पैम मैसेजेस ये सब आ रहा है ब्लॉक करने के बाद भी, तो उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप NCSA के पर्सनल डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्टली कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। बस उनके पोर्टल पर जाना है, ऑनलाइन एक कंप्लेन कर देनी है, फॉर्म फिल कर देना है, और सबमिट करते ही देखिए कैसे फटाफट एक्शन लिया जाएगा। तो अब आने वाले टाइम में ना आपको रिपीटेड प्रमोशनल SMS मिलेंगे अगर आप अपना कंसेंट विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको मिलते रहेंगे। इसमें कभी कभी फायदा भी हो जाता है, लेकिन उसमें बड़ा बड़ा नुकसान भी हो जाता है। इसमें कई सारे स्कैमर्स आपको अपना मैसेज भेज के आपके पैसे रफू चक्कर कर देते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, अलर्ट रहिए, एंड कोशिश यही कीजिए जैसे ही कोई आपको कहे सर हमारे पास एक जबरदस्त प्रमोशन ऑफर है, बस आप अपने फोन पर आए OTP हमसे शेयर कीजिए, तो आप उसको कहिए ना गोरिये गर्म ने बता दिया गोरिये कि तुम स्कैमर हो। 89.6 मिर्ची 1 पर आपकी थोड़ी सी अलर्टनेस आपको बहुत सारे नुकसान से बचाती है, एंड थैंक यू NCSA हमारे राइट को याद दिलाने के लिए। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Six decades of excellence in Qatar. घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल। और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
1: 89.6, 89.6. It's hot.
2: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी।

वैसे स्कूल में भी मैं एक क्लास से दूसरी क्लास बिजली की रफ्तार से भी तेज भागता था। अब जैसा कि आपको बताया, बैक टू स्कूल सीजन चल रहा है, स्कूल्स की बातें हो रही हैं, तो मुझे अपने स्कूल के टाइम की वो शैतानी याद आती है जो हम और हमारा दोस्त राहुल करते थे। हम दोनों क्या करते थे बताए, हमने अपने हाथों में पेन लेते थे और पेन से दरवाजा दूसरी क्लास का खटखटाते थे, क्योंकि ना अगर आप अपनी उंगली से खटखटाएंगे तो आपका हाथ काफी अंदर जाएगा, तो सामने वाला टीचर कभी पकड़ सकता है। तो हम पेन से टक टक टक टक मार के भागते थे और टीचर दौड़ाता था, उससे पहले हम अपनी क्लास के अंदर होते थे। हालांकि कई बार वो हमें चेज करते हुए एकदम सुपर कॉप की तरफ पकड़ लेते थे, लेकिन हम यही कहते थे सर हमने नहीं किया। यार स्कूल डेज में की गई मस्ती 20-20, 25-25, 40-40 सालों बाद भी लोगों को याद रहती है। इसलिए बच्चों, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, लेकिन उतना मस्ती, उतना फन, उतनी शैतानी करो, ताकि आने वाले टाइम में जब जिंदगी आपके साथ खेल खेले तो आप ऐसी ही शैतानियों को याद कर अकेले में मुस्कुरा लिया करें। इसी उम्मीद से कि आपने भी स्कूल डेज में शैतानी की होगी। 5001896 पर मस्मोला गौरव को जरूर बताइएगा। फिलहाल ले रहा अलविदा, लौटूंगा कल शाम एक बार फिर से ढेर सारी मस्ती धमाल के साथ। तब तक हबीबी गुल्लक मिर्ची, इट्स हॉट हरारा कतीर, टाटा बाय, मस्सलाम।

0: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
1: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
2: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
0: उसे सब पता है।
3: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: बज चुके हैं रात के 8, पुरानी जींस सुन रहे हैं आप मिर्ची पे।
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है आपका इस्तकबाल। और चलिए आज के इस महफिल की शुरुआत करी जाए एक रियलिटी चेक के साथ। जी बिल्कुल, मुईन एहसन जज्बी साहब का शेर सुनाता हूँ आपको। कहते हैं कि मुख्तसर ये है हमारी दास्तान जिंदगी, मुख्तसर मतलब कंसाइज में, मुख्तसर ये है हमारी दास्तान जिंदगी, एक सुकून दिल की खातिर उम्र भर तड़पा किए। कितनी डाइकॉटमी हो जाती है ना, सुकून के पीछे दौड़ते रहते हैं और सुकून कभी नहीं मिलता। मुख्तसर ये है हमारी दास्तान जिंदगी, एक सुकून दिल की खातिर उम्र भर तड़पा किए। बहरहाल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहें अपने ताशी के साथ, बिकॉज यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
3: हाँ जी, बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
3: तो हुआ कैसे है? मतलब तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
2: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको।
3: कितने का ड्राफ्ट है मेरा?
2: 7,500 रुपए का।
3: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
2: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
3: किस चीज की फीस?
2: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
3: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने पहले इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
2: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
3: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
2: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं सर, करोड़ों की मशीन है। आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
3: ये भी तुम्हें रख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
2: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
3: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, ये बीच में रख लो हमें ज्यादा।
2: अरे यार
3: आप ढूंढ रहे हो पब्लिक को यार।
2: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी,
3: अरे अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
2: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
3: तुमने आम इंसान का तुमने बनाया ठीक है ना। हाँ? भैया पैसे
2: भाड़ मेरी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
3: हाँ बोलो बोलो
2: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah.

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ, और आइए
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू।
1: अब आपको मुखातिब कराएं हमारे आज के शायर से, और रूबरू में आज हम आपका तारुफ कराते हैं अख्तारुल ईमान साहब से। बिजनौर में इनका जन्म हुआ और ज्यादातर जीवन इन्होंने मुंबई में फिल्मों में डायलॉग राइटिंग करते हुए बिताया। नज्म लिखने के बड़े शौकीन थे और इनकी एक नज्म है जो मेरी बड़ी पसंदीदा है, नाम है तब्दीली। कहते थे कि इस भरे शहर में कोई ऐसा नहीं जो मुझे राह चलते को पहचान ले और आवाज दे ओबे ओ सर फिरे। दोनों एक दूसरे से लिपट कर वहीं गिर्दो पेश और माहौल को भूल कर गालियां दें, हंसे हाथापाई करें, पास के पेड़ की छांव में बैठकर घंटों एक दूसरे की सुने और कहें। और इस नेक रूहों के बाजार में मेरी एक कीमती बेबहा जिंदगी एक दिन के लिए अपना रुख मोड़ ले। वाजिबा तमीज और तहजीब की इस दुनिया में भी एक इंसान कितना अकेला महसूस कर सकता है, ये बयां करती है ये नज्म। अगले नगमे की ओर आगे बढ़ते हैं मिर्ची महफिल पर, आपके ताशी है आपके साथ।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: आदाब मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है आपका इस्तकबाल। और अहमद नदीम कासमी साहब का एक बड़ा ही उम्दा शेर मिला मुझे। ये जो डिबेट्स होते हैं ना, कई बार आप न्यूज चैनल्स पे कुछ देखते हैं जिनमें बड़ा चीखम चिल्ली हो रही होती है, उसके ऊपर बड़ा फिट बैठता है ये शेर। अहमद नदीम कासमी साहब कहते हैं कि उनको क्या फिक्र कि मैं पार लगा या डूबा, उनको क्या फिक्र कि मैं पार लगा या डूबा, बहस करते रहे साहिल पे जो तूफानों की। कितनी सही बात है, जो बहस कर रहे हैं तूफानों की साहिल पे बैठ के, किनारे पे बैठ के, उनको क्या मतलब है कि भाई जो तूफान में, जो पानी में है सच में, उसके क्या हालात हैं। उनको क्या फिक्र कि मैं पार लगा या डूबा, बहस करते रहे साहिल पे जो तूफानों की। कितनी सटीक बात कह दी है। बहरहाल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहे अपने ताशी के साथ। किसी और को फिक्र हो ना हो, हमें है दोस्त, बात करें हमसे आकर। हमारे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHIT ASHI पर, यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है।
0: शी कैन रीड योर माइंड।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अब जब इतनी खूबसूरत गजलें नगमे आसपास बजते हैं तो हमारा भी मन कर जाता है यार।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ ऑब्वियसली। और यार दोस्त, मेरा ना बड़े ही देर से एक गाना गाने का बड़ा मन कर रहा है जो कि मेरे जहन में अटका हुआ है। और ये जो गाना है बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमारे बंगाल का जो बाउल म्यूजिक है ना उससे इंस्पायर्ड है ये। अब हमारे अमित त्रिवेदी साहब ने इतनी खूबसूरती से उस म्यूजिक से इंस्पायर होके इतना प्यारा ये गाना बना दिया है कि अब ज्यादा समय व्यर्थ करे बिना

हा, स्वानंद किरकिरे साहब की आवाज है इस गाने में, और कविताएं, शेर और शायरी सब कुछ मिलेगी यहाँ पे सिर्फ मिर्ची महफिल पर। इट्स हॉट।

पुरानी जीन्स पर। हाय, मैं हूँ श्रेया, और क्योंकि मैं एक आरजे हूँ ना, तो मुझे लोगों से बात करने में बहुत मजा आता है। मतलब लोग मुझसे एक्चुअली में आकर के कहते हैं कि बस कर श्रेया, बहुत ज्यादा बातें नहीं। अच्छा, जब आप किसी एक करियर को लेकर के बहुत ही पैशनेट होते हो ना, तो जनरली आप उसी करियर के लिए ट्राई करते हो। लेकिन हमारे एक बॉलीवुड स्टार ऐसे थे जिनके करियर की शुरुआत ऑडिशन से तो हुई, लेकिन कैमरे के आगे नहीं बल्कि माइक के आगे। ये जो लेजेंडरी स्टार थे ना, इनका ड्रीम था कैमरे के आगे आना, लेकिन उससे पहले ये माइक के आगे आए। किसकी बात कर रही हूँ मैं, अभी बताऊंगी। कुछ गानों के उस पार, कम राइट बैक विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो
3: हाँ जी
4: विवेक जी।
3: हाँ जी बताइए।
4: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं?
3: या ऑफ कोर्स।
4: विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मज़े। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़, ग्लास व्लास देते, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये लेते हैं मजे सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
3: हाँ ठीक ही कह रहे हो।
4: नहीं मैंने तो देखिए मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
3: अब आपको पता ही है हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक तो सोसाइटी वाले इतने नहीं है। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
4: अच्छा
3: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता। हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
4: बिल्कुल
3: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखूंगा,
4: थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
3: हाँ हाँ जरूर जरूर आपसे जरूर मिलेंगे।
4: क्या हुआ क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
3: अरे कुछ नहीं यार।
4: नहीं फिर भी क्या मतलब, बिल्कुल काफी चीखों की आवाज है, क्या हुआ क्या था?
3: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी थी बस हमारी मिसेस की।
4: अच्छा अच्छा।
3: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
4: अच्छा ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
3: हाँ अब इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत।
4: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
3: मजे आ रहे हैं,
4: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
3: अरे
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: अरे देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ पाई?
0: हाँ तो हट जाए
1: हो जाए।

बाकी बॉलीवुड स्टार्स ने जब अपने करियर की शुरुआत की तो कैमरे के आगे टेक 1 2 3 ये करके ऑडिशन दिया, लेकिन जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो माइक टेस्ट, हेलो चेक 1 2 ऐसे शुरुआत करी। पुरानी जीन्स पे हाई, दिस इज मी श्रेया। सुनील दत्त साहब की बात कर रही हूँ मैं, जिनका करियर का पहला जॉब जो था ना वो एज एन आरजे था। ही वॉज अ रेडियो जॉकी विद रेडियो सिलोन, और वहां पे काम करते करते ना सुनील दत्त साहब ने एक सपना देखा। ये सपना था एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को इंटरव्यू करने का। वो कौन सी एक्ट्रेस थी और क्या उनका ये ड्रीम पूरा हुआ, भाई मैं सारी चीजें एक बार में तो बताती नहीं हूँ, क्योंकि अगर बता दी तो तुम कहीं और ना चले जाओ, तो इसलिए तुमको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में बहुत मजा आता है मुझे। वापस अब पूरी कहानी बताती हूँ सुनील दत्त साहब की, ओनली ऑन पुरानी जीन्स, दिस इज मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: वेकेशन ओवर हुआ है, अब जाना होगा स्कूल। लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल। बैग्स ऑन योर शोल्डर्स, एनर्जी रखना फुल।

अच्छा कहते हैं ना कि जब तुम कोई चीज पूरे दिल से चाहो तो कायनात साजिश करती है तुम्हें उस चीज से मिलवाने की। पुरानी जीन्स पर हाय, दिस इज मी श्रेया और मैं बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले सुनील दत्त साहब की, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत मेरे जैसे करी, यानी आरजे बन करके। ही वॉज एन आरजे विद रेडियो सिलोन, जो उस टाइम का इंडिया का बहुत ही फेमस रेडियो चैनल था। यहाँ पे वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू किया करते थे, चैट शोज हुआ करते थे। ऐसे में सुनील दत्त साहब ने एक सपना देखा कि काश कभी वो नरगिस जी को इंटरव्यू करें अपने खास शो पे। एंड कैन यू बिलीव कि ये सपना पूरा भी हुआ, नरगिस जी उनके रेडियो स्टेशन पहुंची, लेकिन सुनील दत्त साहब उनका इंटरव्यू नहीं ले पाए। इनफैक्ट उनसे एक शब्द भी नहीं पूछ पाए। क्यों? क्योंकि ही वॉज सो स्ट्रक विद हर ब्यूटी, वो उनकी खूबसूरती को बस देखते और निहारते रह गए और नरगिस जी मुस्कुरा के वहां से चली गईं। किसे पता था कि आने वाले सालों में नरगिस जी उन्हीं की वाइफ बनेंगी। पुरानी जीन्स पर उस जमाने की बातें, उस जमाने के गानों के साथ विद मी श्रेया, और भी करेंगे ना, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: राखी सावंत हाल ही में वर्ल्ड योगा डे गया है, जहां हमने तरह तरह के लोगों को योगा करते हुए देखा है। आप उनके बारे में क्या सोचती हैं?
4: बहुत सारे लोग योगा जो है ना वो एसी में बैठ के करते हैं, कुछ लोग ओपन करते हैं। हमारा योगा हॉट योगा है, प्लीज आप राखी सावंत के साथ कॉम्पिटिशन कीजिए योगा में, मैं आपको पक्का हरा दूंगी।
3: ऐसी कोई चीज है ही नहीं राखी सावंत जिसमें हम आपसे जीत सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, शी इज हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा मुझे ये बताओ कि 13 साल में, 13 years में आप कौन सी क्लास में होते हो? I think 6th या 7th. और जब आप 23 साल के होते हो तो क्या पढ़ाई कर रहे होते हो? शायद कॉलेज में, है ना? पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया. सोचो कोई एक्ट्रेस इतनी कमाल कि उन्होंने 13 साल की उम्र में एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया जो कि 23 साल के लड़के की माँ का रोल था. ये एक साउथ इंडियन फिल्म थी, हीरो साउथ इंडिया के मेगा स्टार, और ये हीरोइन पूरे इंडिया की जान. कौन सी हीरोइन थी ये? आहा, इतनी आसानी से नहीं. गाने सुन करके वापस आओ, फिर बताती हूँ. यू आर लिसनिंग टू श्रेया ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
1: यार मेरी ऑफिस में कोई कुछ काम ही नहीं करता, सब एक दूसरे को काम चिपकाते रहते हैं, क्या करूं मैं।
2: अब ये सोचने का काम भी तू मुझे चिपकाएगा हु?

कहते हैं कि एक्टिंग एज नहीं स्किल देखता है। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। 13 साल की लड़की ने 23 साल के लड़के की माँ का रोल प्ले किया था और ये बात ना कई सालों तक लोगों को नहीं पता चली जब तक श्रीदेवी जी ने खुद ये लोगों को नहीं बताया। एक साउथ इंडियन फिल्म आई थी जिसका नाम था मुंद्रू मुदीचू। इसमें श्रीदेवी जो कि तब सिर्फ 13 ईयर्स की थी, उन्होंने रजनीकांत जी की मम्मी का रोल प्ले किया जो कि उस टाइम पे 23 ईयर ओल्ड थे। और लोगों को ये बात पता भी नहीं चली जब तक खुद ये बात द हवा हवाई गर्ल ने नहीं बताई। एक अच्छे एक्टर के लिए ना एज लिमिट नहीं होती है फॉर द कैरेक्टर्स दे प्ले। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया।

0: Mirci Păr.
1: Mirci! Scabana, puscabana, sacabana, cabana! Burga, burga! La vieta la burga! Mirci, burga!
2: हेलो
3: भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
2: नहीं, कौन बात कर रहा है
3: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है।
2: अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
3: ओ मेरी बात
2: कौन
3: सुन,
2: बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो देख, जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो
3: जब डर गया
2: तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा?
2: मैं फिर वही बात को लेकर आ गया?
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मैंने तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू मैंने तुझसे
2: वाली बातें कर रहा है क्या?
3: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रही। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ
2: राइट नंबर ले
3: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे रॉन्ग नंबर, अरे जा,
3: बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू
2: यार।
4: रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, विद इस जमाने की श्रेया। तो रेखा जी को हम सब बेहतरीन एक्ट्रेस की तरह जानते हैं, पर क्या आपको ये पता है कि रेखा जी ने अपनी फेलो एक्ट्रेसेस को हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए उनकी आवाज तक बनी है। जैसे जब मूवी आखिरी रास्ता शूट हुई, श्रीदेवी नई नई थी हिंदी इंडस्ट्री, अमिताभ बच्चन जी के साथ ये फिल्म थी, उनके हिंदी के शब्द इतने क्लियर नहीं थे और तब तक वो बहुत सारी साउथ की फिल्में कर चुकी थी। ऐसे में सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट करने पे रेखा जी ने आखिरी रास्ता में श्रीदेवी को अपनी आवाज दी, यानी उनके लिए डबिंग की। याराना फिल्म के लिए नीतू सिंह के लिए अपनी आवाज दी। नीतू सिंह की तब तक शादी हो चुकी थी कपूर खानदान में और मूवी की पूरी शूटिंग खत्म, लेकिन डबिंग रह गई थी। प्रोडक्शन हाउस को भारी नुकसान हो रहा था बिकॉज मूवी कम्प्लीट ही नहीं हो पा रही थी। फिर क्या, रेखा जी ने नीतू सिंह की आवाज बन करके इस फिल्म में भी डबिंग की है। एंड देन शी स्टेप्ड इन फॉर स्मिता पाटिल जी। स्मिता पाटिल जी की मूवी थी वारिस, जिसकी शूटिंग के बाद वो इस दुनिया में नहीं रही। ऐसे में मूवी शूट हो चुकी थी लेकिन उनकी आवाज नहीं थी। रेखा जी यहाँ पर भी आई और स्मिता पाटिल की इस फिल्म को पूरा किया उनकी आवाज बन करके। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। इसी बात पे रेखा जी का एक गाना हो जाए फ्रॉम द फिल्म उमराव जान सुन करके यहीं वापस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
2: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनू। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, हमारी जो उस जमाने की फिल्में होती थी ना, उसमें विलेन्स बहुत पॉपुलर हो जाते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि विलेन हीरो से ज्यादा फेमस हो जाते थे। अब चाहे वो मिस्टर इंडिया के मोकैम्बो हो, हु बिकेम मोर पॉपुलर देन मिस्टर इंडिया हिमसेल्फ यानी अनिल कपूर, या फिर शोले के गब्बर हो जो कि जय वीरू से ज्यादा लोगों में छा गए थे। तो पहली बार ऐसा हुआ जब

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
3: करिश्मा कपूर
4: Who's most likely to sleep with the lights on because they're so scared to death?
5: I have to answer this?
4: No, I'm asking just like that.
6: करिश्मा मैम एक का तो जवाब दे दो
5: Probably करीना Out of both of us.
3: बेबो को देख के लगता नहीं है वो डरती होंगी Because she is always in safe hands. If you know what I mean. आप सुन रहे हैं मिर्ची It's hot.
1: Bollywood bol dal. Bollywood Bollywood Bollywood bol dal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
0: 89.6 It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

हफ्तों तक लोग लाइन लगा के खड़े होते थे कि शायद इस फिल्म की टिकट सुने मिल जाए। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। लोगों के घर के लोगों की बारियां लगी हुई थी कि आज ये बंदा जाकर के घर से खाना पानी लाएगा और दूसरा बंदा लाइन में खड़ा होगा। ये हाल हुआ था जब मुगले आजम रिलीज हुई थी। कहते हैं मुंबई के मराठा मंदिर के आगे तो लोगों में हाथापाई हो गई थी, कर्फ्यू लगने तक की नौबत आ गई थी। पीपल यूज टू स्टैंड इन क्यूज फॉर वीक्स टू गेट द टिकट्स। ऐसी पॉपुलैरिटी किसी फिल्म की इंडिया ने पहले कभी नहीं विटनेस की थी। मुगले आजम की बात कर रही हूँ मैं। इसके टिकट्स भी ना बहुत ही खास तरीके से बिके थे। इसके टिकट्स में एक पूरा डॉकेट होता था, एक फोल्डर रखा गया था, तो अगर आप टिकट खरीदते थे आपको एक फोल्डर भी दिया जाता था। उस फोल्डर में दिलीप साहब और मधुबाला जी की फोटोग्राफ्स थी। नॉट जस्ट दैट, पूरी फिल्म को शूट करते समय जो जो खट्टी मीठी इंसिडेंट्स हुए थे ना वो भी लिखे गए थे। आज जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो जाए, ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी उसी जमाने में बना करती थी। लेकिन इस फिल्म ने मधुबाला जी को बहुत सारे घाव दिए थे जिसकी वजह से वो बिस्तर से कई हफ्तों तक नहीं उठ पाई थी। शी वाज बेड रिडन। क्यों हुए थे घाव अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, विद मिर्ची श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। अब अगर उस जमाने की फिल्म की बात हो रही है तो मुगले आजम की बात नहीं करूं, ये तो गुनाह हो जाएगा मुझसे। आई एम श्योर आपने ये फिल्म देखी होगी, तो वो सीन याद है जिसमें मधुबाला जो है उनको जंजीरों से जकड़ा जाता है। के आसिफ साहब, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, वो हर चीज ऑथेंटिक चाहते थे, हर चीज रियल चाहते थे, तो इसीलिए मधुबाला जी के चेहरे पे वो पेन आए, उन्होंने एक्चुअल जंजीर यानी वो लोहे वाली चेन्स को उन्हें पहनाया था, जिसकी वजह से उनके इतने घाव हुए कि इस सीन को शूट करने के बाद वो कई महीनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। अब ये तो शरीर के घाव थे जो सबको दिख रहे थे, लेकिन दिलीप साहब के होने की वजह से जो दिल के घाव थे उन्हें बहुत कम लोग देख पा रहे थे। इसके बारे में भी बताऊंगी, बस कुछ गानों के उस पार। कम राइट बैक, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर 89.6 मिर्ची। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन
2: कैन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: Done.

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: अच्छा आप ये सोच सकते हो कि एक टाइम ऐसा था जब बच्चन जी के साथ कोई हीरोइन काम नहीं करना चाहती थी। हाय, मेरा नाम है श्रेया और आप मुझे सुन रहे हैं पुरानी जीन्स पर। ये हुआ था जब बच्चन साहब की इनिशियल सारी फिल्म्स फ्लॉप हो रही थी। जंजीर से पहले उन्होंने जितनी की थी ना, सब बॉक्स ऑफिस पे एकदम औंधे मुंह गिरती थी। सो इसी टाइम पे एक फिल्म आई बहुत ही प्यारी जो मुझे बहुत पसंद है, बॉम्बे टू गोवा। अब इस फिल्म के लिए महमूद साहब जो कि ये फिल्म बना रहे थे, उन्हें बच्चन साहब के ऑपोजिट एक हीरोइन चाहिए थी। जितनी भी हीरोइंस को उन्होंने अप्रोच किया, सबने साफ मना कर दिया, हम इस फ्लॉप एक्टर के साथ काम नहीं करेंगे। एक तो उसकी हाइट भी इतनी लंबी है कि हीरोइंस उनके साथ अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसे में सिर्फ एक हीरोइन थी जिन्होंने हामी भरी, एंड दैट वाज अरुणा ईरानी। अरुणा ईरानी ने इस फिल्म में उनके साथ काम किया। अब यहाँ पे अमिताभ जी ने एक वादा किया, वो वादा कब कैसे कहाँ पूरा हुआ बताऊंगी पूरी कहानी। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: वेकेशन ओवर हुआ है अब जाना होगा स्कूल. लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल. बैग्स ऑन योर शोल्डर्स एनर्जी रखना फुल क्योंकि मिर्ची

तो अरुणा ईरानी ने अमिताभ बच्चन जी के साथ तब काम किया जब कोई और हीरोइन नहीं करना चाहती थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और बॉम्बे टू गोवा ये फिल्म बना रहे थे महमूद साहब। इसमें अमिताभ बच्चन को लिया गया। बच्चन साहब की जितनी भी फिल्म्स इससे पहले आई थी सब फ्लॉप हो रही थी। जंजीर से पहले विच एवर फिल्म्स ही वाज डूइंग सब के सब बॉक्स ऑफिस पे फेल हो रही थी। ऐसे में उनके साथ कोई भी हीरोइन नहीं काम करना चाहती थी। एक हीरोइन जिन्होंने हामी भरी वॉज अरुणा ईरानी। अमिताभ बच्चन जी ने अरुणा ईरानी की इस बात को एकदम दिल में बैठा लिया। आपको पता है एक वादा हुआ ऑन द सेट, जब मुस्कुरा के अमिताभ बच्चन जी ने ये कहा कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा, तो अरुणा ईरानी ने बच्चन साहब से मुस्कुरा के कहा कि जब भी तुम बहुत बड़े स्टार बन जाओगे ना तो मुझे अपनी किसी फिल्म में पॉजिटिव रोल देना, क्योंकि अरुणा ईरानी वॉज नोन टू प्ले नेगेटिव कैरेक्टर। ये वादा बच्चन साहब ने निभाया भी। अभिमान में डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी से बात करके अरुणा ईरानी को एक छोटा सा ही सही लेकिन पॉजिटिव रोल दिलवा के। पुरानी जीन्स पर उस जमाने की बातें और गाने श्रेया के साथ चलती रहेंगी, सो डोंट गो एनीवेयर, वापस आओ, आगे बढ़ाते हैं बातें।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: सोनी राजदान, आले और शाहीन, इन दोनों में से हु इज मोस्ट लाइकली टू लिसन टू यू इवन टुडे?
4: डिफिकल्ट वन, स्प्लिट बिटवीन माय चिल्ड्रन।
5: सो बोथ ऑफ देम इन डिफरेंट वेज, बट या दे आर रिसेप्टिव जनरली, बट आई थिंक आई मस्ट बी इरिटेटिंग देम अ लॉट बिकॉज़ आई गिव टू मच एडवाइस, दैट्स व्हाट दे टेल मी। सो क्या बोलूं आपको?
3: सोनी राजदान, आपने कोई जवाब नहीं दिया, आलिया या शाहीन किसी का नाम नहीं लिया। अगली बार जब आप आएंगे हम फिर से ये सवाल पूछेंगे। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
7: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है।
9: शी कैन रीड योर माइंड, She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे या फिर श्रेया के साथ जाने का टाइम हो गया है, सो लेट्स हिट द हाईवे। आज का मेरा हाईवे हिट उन सारे हार्टलेस दिलबरों के लिए है जो अपने प्यार करने वाले को ना बहुत तड़पाते हैं। मतलब उनको समझ में आता है कि वो उनके लिए तड़प रहे हैं, लेकिन उन्हें मजा आता है उनको छेड़ने में, उनको तरसाने में, उनको थोड़ा तड़पाने में। ये गाना आज उन्हीं के लिए। श्रेया जाती है, कल मिलने फिर से आती है। इन केस यू मिस मी, यू नो वेयर टू कैच मी, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माय हैंडल। फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टा पे भी हूँ, डीएम कर देना। बाय बाय।

बन के साया मेरे संग रहता है कौन, मैंने ये न जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी। वो ख्वाब है या हकीकत है, वो जो भी है मेरी जरूरत है।